0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में दिल्ली से प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मैं मनोज, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशकान के साथ।

कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम वंदना में लीजिए, अब सुनिए वाणी जयराम की आवाज़ में ये भजन।

अभी आपने सुना ये भजन पामेला जैन की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अगला भजन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं शर्मा बंधु की आवाज़ में इस भजन के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत लीजिए सुनिए उत्तम उपदेश विषय पर ओंकार सिंह भदौरिया का आलेख। वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: उपदेशकों द्वारा श्रोताओं को उपदेश मात्र सुनाने के लिए या मन बहलाने के लिए नहीं दिए जाते हैं, वे इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग उन्हें तल्लीनता के साथ सुनकर उनको समझें और उन पर अमल करके अपने व्यवहार व चरित्र में कुछ सुधार कर सकें। हमारे समाज में उपदेशकों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उपदेशक कई तरह के होते हैं, परंतु मोटे तौर पर वे दो तरह के ही होते हैं। पहले प्रकार के उपदेशक वे होते हैं जो अव्यवहारिक बातों पर कभी भी दूसरों को उपदेश नहीं देते हैं। ऐसे उपदेशक अपने अनुयायियों या श्रोताओं को उन्हीं बातों पर उपदेश देते हैं जिन पर वे उपदेशक स्वयं अमल करते हैं अथवा व्यवहार करते हैं। जिन बातों पर वे उपदेशक स्वयं अमल नहीं कर सकते हैं अथवा अमल नहीं करते हैं, उन बातों पर वे दूसरों को कभी उपदेश नहीं देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे उपदेशक वाणी के द्वारा दूसरों को उपदेश देने के स्थान पर अपने आचरणों के द्वारा दूसरों को उपदेश देने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे उपदेशकों के अधिकांश कार्य मानव कल्याण के लिए ही होते हैं। ऐसे उपदेशकों के प्रति श्रोताओं के मनों में सम्मान की बहुत अधिक भावना होती है। हमारे समाज में ऐसे उपदेशकों की भारी कमी हो गई है। दूसरे प्रकार के उपदेशक वे होते हैं जो ये मानकर चलते हैं कि उपदेश सिर्फ दूसरों को देने के लिए ही होते हैं, वे स्वयं अमल करने के लिए नहीं होते। जो उपदेशक पहले से ये मानकर चलते हैं कि उन बातों पर स्वयं अमल करना जरूरी नहीं है जिन पर दूसरों को उपदेश देना है, उन उपदेशकों से आदर्श आचरण की उम्मीद रखना एक मृगमारीचिका के समान ही है। आजकल हमारे समाज में ऐसे उपदेशकों की बाढ़ सी आ गई है जो कि सिर्फ अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा दूसरों को उपदेश देने की कला में निपुण होते हैं। आध्यात्म अथवा किन्हीं अन्य विषयों का गहन और सूक्ष्म ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले विद्वान लोग तो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को उपदेश देते ही हैं। किसी विषय का रंच मात्र ज्ञान नहीं रखने वाले या मामूली सा ज्ञान रखने वाले लोग भी दूसरों को उपदेश देते हुए नजर आते हैं। हर कोई उपदेशक या वक्ता तो होना चाहता है, परंतु आचरणकर्ता कोई नहीं होना चाहता है। समाज के लोगों को अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए और समाज में महत्व पाने के लिए भी कुछ लोग अवसर मिलने पर दूसरों को उपदेश देने लगते हैं। लोगों को आत्मा परमात्मा के बीच के संबंधों को व आत्मा परमात्मा के सभी रहस्यों को सटीक उदाहरणों की सहायता से आसान तरीकों से समझाने, पौराणिक महापुरुषों के आदर्श जीवन चरित्रों को बताने, किन्हीं विषयों की आवश्यक जानकारियों को बताने और आम जनों को जागरूक बनाने के लिए सार्थक उपदेश अत्यंत आवश्यक होते हैं। समाज में फैली हुई अनेक शंकाओं और भ्रांतियों का समाधान करवाने हेतु दिए जाने वाले उपदेश प्रायः सबको अच्छे लगते हैं। ऐसे उपदेशक बिरले ही होते हैं जो अपने प्रवचनों या उपदेशों के बाद अपने श्रोताओं को अपनी शंकाओं का समाधान करवाने के लिए संक्षिप्त तथा सार्थक सवाल पूछने के अवसर प्रदान करते हैं। उपदेशों में कही गई बातों पर अमल करना काफी मुश्किल काम होता है, जबकि अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को मौखिक उपदेश देने का काम अत्यंत सरल होता है। इसलिए भी समाज के बहुत से लोग दूसरों को उपदेश देने में आगे और अमल करने के मामले में पीछे रहते हैं। वाणी के स्थान पर अपने आदर्श आचरणों के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सभी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। वास्तविकता यही है कि संसार में सच्चा और सबसे अच्छा उपदेश वही माना जाता है जो वाणी के स्थान पर अपने आदर्श आचरण की सहायता से चुपचाप संपूर्ण मानव समाज को दिया जाता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आपने सुना उत्तम उपदेश विषय पर ओंकार सिंह भदौरिया का आलेख। वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेदत ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

0: ये थी श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। कृषि चर्चा के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय है पशुओं में गलघोंटू रोग का कारण व बचाव। उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव, मक्खी मच्छरों की अधिकता से वायु और जल जनित रोग बढ़ जाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं की पाचन शक्ति में मंदता आ जाती है, जिसके कारण पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे पशुओं में तरह तरह के रोग हो जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लंगड़ी गिल्टी या जहरी बुखार और इन सबसे खतरनाक बीमारी होती है गलघोंटू। यह बीमारी गाय भैंस बकरी जुवाली करने वाले प्राय सभी पशुओं में हो जाती है। यह एक संक्रामक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। यह रोग अधिकतर युवा कम उम्र के पशु में प्राय अधिक प्रभावी रहता है। गलघोंटू रोग एक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा फैलता है। ये जीवाणु पशु के शरीर के भीतर रहकर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, लेकिन शरीर के बाहर बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये रोग दूसरे चारागाह में चरने या दूसरे चारा पानी ग्रहण करने अथवा रोगी पशु स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से स्वस्थ पशु बीमार हो जाते हैं। किल्ली मक्खियां भी रोग को फैलाने में सहयोग प्रदान करती हैं। इस रोग के लक्षण पशु में अचानक प्रकट होने लगते हैं। पशु का तापक्रम बढ़कर 106 से 160 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। पशु सुस्त होकर चारा पानी छोड़ देते हैं। पशु कमजोर हो जाते हैं। पशु के गले और निचले जबड़े में कष्टदायी सूजन आ जाती है, जो दबाने पर दबती नहीं है। यह सूजन धीरे धीरे बढ़ती है। जीभ में भी सूजन आ जाती है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु घुर घुर की आवाज निकालते हैं। पशु के मुंह और नाक से लाल अथवा सफेद रंग का स्राव टपकता है। जीभ सूखकर बाहर निकल आती है। श्लेष्मिक झिल्ली गहरे लाल रंग की और खून चमकने लगता है। नथुने फूल जाते हैं। अंत में पशु जमीन पर गिरकर और तेज घर्राटे की आवाज के साथ बहुत लार गिराते हैं। कभी कभी पशु में बिना लक्षण प्रकट हुए भी पशु की 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। यह रोग प्राय एक साथ फैलता है और लगभग 10 दिन में एक स्थान पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस रोग का विशेष इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि जब पशु पर रोग का प्रभाव होने लगता है तो दवा प्रभावहीन हो जाती है। इस रोग से पशु के बचाव के लिए पशुशाला की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद कीटनाशक दवा और चूने का घोल बनाकर पशुशाला की पुताई करवानी चाहिए, जिससे मक्खी और मच्छर न पनपने पाए, क्योंकि मक्खी और मच्छर भी रोग को फैलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। पशुशाला ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहाँ पर पानी एकत्रित न होता हो। बरसात के पानी के निकास का समुचित प्रबंध करना चाहिए। पशुओं को सूखी साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। बासी कटे हुए चारे में फंगस लग जाते हैं, इसलिए पशुशाला हवादार होनी चाहिए। फंगस लगा हुआ चारा पशुओं को न खिलाएं। पशुओं के चारा दाना पानी की स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखें। ओस और बरसात में भीगा हुआ चारा न खिलाएं। हरे चारे की कुट्टी करके भूसा में मिलाकर खिलाएं। जहां तक संभव हो सके पशुओं को चारागाह में चरने से रोकना चाहिए। बांध कर चारा खिलाएं। हरा चारा खिलाने के तुरंत बाद पानी न पिलाएं। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। दूध निकालने के बाद एंटीसेप्टिक घोल से हाथ साफ कर लें। जैसे ही पशु में रोग के लक्षण दिखाई दें, तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। साथ ही प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व रोग प्रतिरोधात्मक टीकाकरण करवाना चाहिए। यही सरल और सस्ता उपाय है। टीकाकरण का लाभ लेकर ही पशुपालक भाई अपने पशुधन की जानलेवा बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत आपने सुनी ये सामूहिक चर्चा, जिसका विषय था पशुओं में गलघोटू रोग के कारण व बचाव, और उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। श्रोता साथियों, सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे

0: माध्यम के बारे में, जिसने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजीवन में एक अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, ये माध्यम कोई और नहीं बल्कि केवल दूरदर्शन है। दूरदर्शन केवल एक टेलीविज़न चैनल नहीं बल्कि यह भारत की विकास यात्रा है, बदलते समाज और हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण साक्षी रहा है दूरदर्शन। घर घर में टेलीविज़न की पहुंच बनाने और करोड़ों भारतीयों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में दूरदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कई धारावाहिक और कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चैनलों ने दूरदर्शन के माध्यम से काम किया है। 15 सितंबर को भारत में दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1959 में भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुई थी। शुरुआत एक छोटे से प्रयोग के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ यह देश के सबसे व्यापक जन संचार माध्यमों में से एक बन गया। प्रारंभिक दौर में दूरदर्शन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों को आम जनता तक पहुंचाना भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, और वर्तमान समय में भी दूरदर्शन अपनी ये जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। धीरे धीरे दूरदर्शन भारतीय परिवारों का हिस्सा बन गया। विशेषकर 1980 से 1990 के दशक में दूरदर्शन के कार्यक्रमों ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया। उस समय टेलीविज़न के सामने पूरा परिवार एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखता था, फिर चाहे वो कार्यक्रम रामायण हो या महाभारत। कई सारे कार्यक्रम जैसे भारत की खोज, मालगुड़ी डेज और चित्रहार जैसे कार्यक्रमों ने भारतीय दर्शकों का मन में विशेष स्थान बनाया। इन कार्यक्रमों ने केवल मनोरंजन नहीं किया बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों से भी दर्शकों को जोड़ा। दूरदर्शन की एक विशेष पहचान ये रही कि भारत की विविधता को एक मंच प्रदान करने का काम दूरदर्शन ने किया। देश के अलग-अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े कार्यक्रमों को प्रसारित करके दूरदर्शन ने विविधता में एकता की भारतीय भावना को मजबूत किया। कृषि क्षेत्र में भी दूरदर्शन का योगदान उल्लेखनीय रहा है। किसानों के लिए मौसम, कृषि तकनीक, फसल संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने का भी कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दूरदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष परिस्थितियों में जब विद्यार्थी का विद्यालय जाना संभव नहीं था, तब टेलीविज़न के माध्यम से शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास दूरदर्शन के माध्यम से किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सार्वजनिक प्रसारण माध्यम संकट के समय समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। समाचारों की बात करें तो दूरदर्शन ने लंबे समय तक देश और दुनिया के घटनाओं को करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। राष्ट्रीय घटनाओं, चुनावों, खेल प्रतियोगिताओं और महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज दूरदर्शन को डिजिटल तकनीक के साथ कदम मिलाते हुए नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच और अधिक मजबूत करनी है। युवा दर्शकों की रुचियों को समझते हुए गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक, ज्ञानवर्धक और आकर्षक सामग्री उपलब्ध कराने का समय अब आ गया है। दूरदर्शन की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारण का दायित्व है। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत सूचना दूरदर्शन के माध्यम से ना कभी दी गई थी, ना कभी दी जाएगी। जब सूचना की दुनिया में तेजी बहुत अधिक हो गई है, तब यही संतुलित और जिम्मेदार सूचना का महत्व भी बढ़ गया है, और ये सिर्फ दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी संदेश के साथ आप सभी को दूरदर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दर्पण। 6:55 होने को हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारतस्य कूटनीतिक औन्नत्यं प्राकटयन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स मञ्चे वैश्विक नेतृणाम् उपस्थितिः भारतस्य प्रभावातिशयम् अदर्शयत्। वार्ताहरान् संबोधयन् डॉक्टर एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् एतत् सम्मेलनम् अतिध्रुवीकृते जगति आयोजितं गतम्, यस्य समीक्षणं महदावश्यकमस्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां विगत भानुवासरे निवृत्तस्य अस्य दिवस द्वयात्मक शिखर सम्मेलनस्य सफल आयोजनाय सदस्य देशैः भारतस्य कूटनीतिक नेतृत्वस्य अथ अबाधित प्रामाण्यस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसा विहिता। राजस्थान राज्यस्य नगर निकाय निर्वाचनेषु भारतीय जनता दलस्य विजयानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थानस्य जनतां प्रति आभारं प्राकटयत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् दलस्य एषः विजयः असत्यस्य प्रतिध्वनेः उपरि सत्यस्य विजयस्य एका अबाधिता सिद्धिः वर्तते। मोदिना प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत् ते द्वियन्त्रसर्वकारस्य नेतृत्वे सञ्चालितानाम् अभ्युदय सुशासन नीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति सम्पूर्णकोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्ररूप्यकाणाम् अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 अप्रैल मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रभावी भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखण्ड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जीएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्यायप्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे रामजेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्यभाषणं कुर्वन् मुख्यन्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वतनियमो भवेत्। समुद्रसुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीयसैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरङ्गेन विस्फुटः। परम् अमेरिकादेशस्य मध्यकमाण्ड् विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन् इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् सङ्कटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर् मासस्य 31 यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं दधत् भारतीय ऋतुविज्ञानविभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिणभारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। ये नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी भी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वे केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफ़ी कम होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। एटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टकनपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से होगा। लोक संगीत के अंतर्गत कलाकार होंगे उत्तम सिंह यादव व साथीगण। प्रातः 9:00 आप सभी के लिए प्रस्तुत रहेगा सूचना और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। कलाकार होंगे पंडित कुमार गंधर्व और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा गायन में राग अहीर भैरव। प्रातः 10:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 11:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा और दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी। दोपहर 1:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी और दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा। प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।

5:02 पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। शाम 5:33 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रस्तुत रहेगा शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारण किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। शाम 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम लोकगीत। कलाकार होंगे ब्रिज किशोर कुशवा और कृतेंद्र सूर्यवंशी। रात 8:15 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। और रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम राग रजनी। इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब यहीं संपन्न होती है।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। शिप्रा के तट पर जलाए जाएंगे 25 लाख दीप। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता पर दिया बल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदी के लिए आज से पंजीयन शुरू। और राज्य में फिलहाल बारिश का दौर थमा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इस दौरान शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान का आयोजन प्रदेश के प्रत्येक ग्राम और नगर स्तर पर अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साहपूर्वक किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय और समयबद्ध बताया है। उन्होंने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण, जिसका विषय था न्याय का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जनविश्वास कानूनी व्यवस्था के स्तंभ में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में हुई विजय इसी विश्वास का प्रतीक है। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त हो रहा है पूरे देश के अंदर, हाल ही में राजस्थान के अंदर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में जो प्रचंड जीत मिली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और खास करके राहुल गांधी जी ने कोटा में ही अभी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम किया और कोटा के होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके युवाओं का रुझान किधर है ये बताने का अपने आप में ये प्रमाण है।
0: सरकार ने कहा है कि बैंक यूपीआई और रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेन देन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से लेन देन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 600 से अधिक भागीदार, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों की प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभियंता दिवस के अवसर पर

लोक निर्माण विभाग द्वारा आज भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाले अभियंताओं, अधिकारियों, संयुक्त दलों तथा निर्माण एजेंसियों को लोक निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 1100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। सागर जिले के बंडा क्षेत्र में दूषित शराब के सेवन से बीमार हुए लोगों का हाल जानने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा डॉक्टरों से उपचार की स्थिति के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से सरकार बेहद गंभीर है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 19 सितंबर को भोपाल में मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। इससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की राह आसान होगी, साथ ही कॉलेज आने जाने में भी सहूलियत होगी। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में सुबह 10 बजे से होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में ही 70% अंक के साथ स्कूल में प्रथम आना जरूरी है। पुरुष क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। रविवार को पहले मैच में 7 विकेट से शानदार जीत के बाद भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा मैच गुरुवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं है। प्रदेश में अब तक 88% से अधिक बारिश हो चुकी है। राज्य में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र और टर्फ के असर से पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में कल सुबह से कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते कुंडालिया बांध में जलभराव होने के कारण बांध के 3 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। खंडवा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलन से होगी। कटनी में NGT द्वारा नदी तालाब में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने के बाद विसर्जन के लिए बनाए गए तालाबों में ही प्रतिमाओं के विसर्जन करने को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभियान चलाया है। इंदौर में 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सेवा संकल्प महाअभियान की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। डिंडौरी की ग्राम पंचायत पौंडीमाल में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों के दीर्घकालीन स्वास्थ्य कल्याण के लिए वार्षिक हाथी रिजुनोवेशन कैंप आज 15 सितंबर से शुरू होगा, जो 20 सितंबर तक चलेगा। भोपाल के भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा।

मदरसे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था इस

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमने कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म ज्वेल थीफ से। इस गीत को बोल दिए हैं शैलेंद्र ने, संगीत सचिन देव बर्मन का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।

0: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मेरे हमसफर से ये गीत, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की है। आइए सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफर से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात,
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से। इस गीत को बोल दिए हैं नीरज ने, संगीत सचिन देव बर्मन का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम पुजारी से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कृपया ध्यान दें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आज ही आयुष्मान ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं या डायल करें 14555।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म आनंद से। इस गीत को बोल दिए हैं योगेश ने, संगीत सलिल चौधरी का है और आवाज़ मुकेश की है। आइए सुनते हैं फिल्म आनंद से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब समय है कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। इस गीत को बोल दिए हैं एसएम बिहारी ने, संगीत ओपी नैयर का है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आइए सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब अपने समापन की ओर है और समय है कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतिम गीत को सम्मिलित करने का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने, इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा ₹2000 तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख

0: से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
2: Given a choice, a judicial officer,
3: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

0: न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says, mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi.

0: In Jammu adopted by army, the paper writes, adopted by army after killings, Jammu village sees change as it fights tragedy. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India, Justice Suryakant, says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं उत्तम सिंह यादव व साथीगण, और हम आपको सुनवा रहे हैं इनकी आवाज़ में कुछ लोकगीत। साथी गण हैं तिलक सिंह, हरी सिंह और राम स्वरूप राजौरिया। लीजिए, प्रस्तुत है कलाकार उत्तम सिंह यादव व साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला देवी गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम लोक संगीत में कलाकार हैं उत्तम सिंह यादव व साथीगण। अभी आपने सुना ये ढोला गीत। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कलाकार उत्तम सिंह यादव व साथियों की आवाज़ में ये चौकड़िया।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। अभी आपने सुना ये दादरा गीत। कार्यक्रम लोक संगीत अब अपने समापन की ओर है। लीजिए शामिल करते हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत कलाकार उत्तम सिंह यादव व साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अंतिम बुंदेली लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत आज कलाकार थे उत्तम सिंह यादव व साथीगण थे तिलक सिंह, हरी सिंह और राम स्वरूप राजौरिया। आपने सुने इनकी आवाज़ में कुछ लोकगीत। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल लोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में आयोजित राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में कहा कि सुधार एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में हुई विजय इसी विश्वास का प्रतीक है।

अभियंता दिवस के अवसर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं है। प्रदेश में अब तक 88% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजने को हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी श्रोता साथियों को आयुष तोमर का प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारत के महान अभियंता, राष्ट्र निर्माता, दूरदर्शी प्रशासक और विकास के प्रबल समर्थक भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को स्मरण कर रहे हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि ज्ञान, अनुशासन, ईमानदारी और तकनीकी दक्षता को राष्ट्रहित से जोड़ दिया जाए तो एक व्यक्ति भी देश के विकास की दिशा को बदल सकता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर क्षेत्र के मुदेनहल्ली में हुआ था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। उनका जीवन केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, उन्होंने जल संसाधन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास और प्रशासन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की विशेष पहचान यह बनी कि उनकी जल प्रबंधन और सिंचाई संबंधी तकनीकी की समझ ने उनको सभी के समक्ष एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने जल के वैज्ञानिक उपयोग और संरक्षण पर विशेष बल दिया। बाढ़ नियंत्रण तथा जलाशयों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया गया है। उनके कार्यों में कृष्णराज सागर बांध का विशेष उल्लेख किया जाता है। मैसूर क्षेत्र में सिंचाई और जलापूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते समय इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह केवल एक इंजीनियरिंग परियोजना नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि वैज्ञानिक सोच और योजनाबद्ध विकास समाज के जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का मानना था कि भारत की प्रगति के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त नहीं है, देश को चाहिए कि शिक्षा, तकनीक, उद्योग, कुशल प्रशासन और अनुशासित कार्य संस्कृति। मैसूर राज्य के दीवान के रूप में उन्होंने प्रशासन और आर्थिक विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में औद्योगिक और शैक्षिक संस्थाओं के विकास पर जोर दिया गया। वे चाहते थे कि भारत केवल कृषि पर निर्भर ना रहे, बल्कि आधुनिक उद्योग और तकनीकी शिक्षा में भी आगे बढ़े। उनकी प्रसिद्ध सोच थी कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए उत्पादन, दक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी समय और कार्य के प्रति अनुशासन। वे अपने जीवन में कठोर कार्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके व्यक्तित्व से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और जिम्मेदारी से प्राप्त होती है। उनकी सेवाओं और राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए उन्हें 1955 में

भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जब भारत आत्मनिर्भरता, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, स्मार्ट अवसंरचना और आधुनिक विनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब डॉक्टर विश्वेश्वरैया की सोच और भी प्रासंगिक दिखाई देती है। आज का अभियंता केवल पुल, सड़क, भवन बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, वह कई तकनीकों का विकास करता है, ऊर्जा और जल की बचत के उपाय खोजता है, पर्यावरण की रक्षा में योगदान देता है और समाज की समस्याओं में वैज्ञानिक समाधान तैयार करता है। इसलिए अभियंता दिवस केवल एक महान अभियंता को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक सोच और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का दिन भी है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जीवन हमें संदेश देता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाए। आइए इनकी जयंती पर हम संकल्प लें कि हम विज्ञान और तकनीक को केवल व्यक्तिगत सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक कल्याण और राष्ट्र निर्माण का साधन बनाएंगे। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर शत शत नमन।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: श्रोता साथियों, जितना भाषा का महत्व होता है उतना उस व्यक्ति का भी महत्व होता है जो उस भाषा में भाषाविद होता है या उसका साहित्यकार होता है। आज 15 सितंबर का दिन हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने कविता, नाटक, एकांकी, आलोचना और साहित्य अध्यापन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, जिन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष रूप से एकांकी सम्राट के रूप में सम्मानपूर्वक अपना काम किया और उनके काम को सम्मानपूर्वक याद भी किया जाता है। उनका जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है था। वे केवल कवि या नाटककार ही नहीं थे बल्कि एकांकीकार, आलोचक और अध्यापक के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके थे। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। उनकी साहित्यिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि हिंदी एकांकी को एक सशक्त साहित्यिक विद्या के रूप में, विधा के रूप में प्रतिष्ठित करना। हिंदी एकांकी के विकास में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उन्हें इस विधा के प्रमुख प्रवर्तकों में गिना जाता है। उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु था जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उन्होंने लगातार एकांकी साहित्य की रचना की। उनकी एकांकियों में इतिहास, संस्कृति, समाज और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। पृथ्वीराज की आँखें, चारू मित्रा, शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, दीपदान और कौमुदी महोत्सव जैसी रचनाओं में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों को नाटकीय प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया गया। वहीं रेशमी टाई जैसी एकांकियों में सामाजिक जीवन और मानवीय व्यवहार के यथार्थ पक्ष दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में पात्र केवल इतिहास की घटनाओं का हिस्सा नहीं होते बल्कि वे भावनाओं, संघर्षों, आदर्शों और मानवीय कमजोरियों को भी सामने लाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की भाषा उनकी रचनात्मक

प्रतिभा का एक महत्वपूर्ण पक्ष थी। उनकी भाषा में साहित्यिक गरिमा के साथ साथ संवादों की सहजता और नाटकीयता दिखाई देती है। यही कारण है कि उनके एकांकी पढ़ने के साथ साथ मंच पर प्रस्तुत करने के लिए भी वो प्रभावशाली माने जाते थे। उनकी साहित्यिक दृष्टि में इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं था। इतिहास के माध्यम से वे वर्तमान समाज के सामने कर्तव्य त्याग, आत्मसम्मान, नैतिकता और मानवीय मूल्यों जैसे प्रश्न भी रखा करते थे। उनके साहित्य में छायावादी और रहस्यवादी संवेदनाओं की छाप भी दिखाई देती है। कविता के क्षेत्र में उन्होंने भाव, सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभूति को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार उनके साहित्य में एक और इतिहास और समाज है तो दूसरी ओर मनुष्य का आंतरिक संसार भी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का संबंध प्रयागराज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी गहराई से जुड़ा है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया और बाद में विभागाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार उन्होंने केवल साहित्य की रचना ही नहीं की बल्कि अनेक विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों को हिंदी के प्रति प्रेरित भी किया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को उन्हें 1963 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साहित्य आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि उसमें मानवीय जीवन के ऐसे प्रश्न उठते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते। आज के डिजिटल युग में जब मनोरंजन के अनेक माध्यम हमारे सामने हैं तब भी साहित्य और रंगमंच हमें मनुष्य के भीतर झांकने का अवसर देता है। उनकी जयंती हमें ये संदेश देती है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण भी है और समाज को दिशा देने वाला माध्यम भी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी लेखनी से हिंदी एकांकी को एक विशिष्ट पहचान दी। उन्होंने इतिहास और वर्तमान भावना और विचार, साहित्य और रंगमंच के बीच एक सुंदर सेतु बनाया। आइए उनकी जयंती पर हम ये छोटा सा संकल्प लें कि हम हिंदी साहित्य को केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा न मानें बल्कि उसे पढ़ें, समझें और अपने जीवन से भी जोड़ें। कभी किसी अच्छे एकांकी का मंचन देखें, किसी साहित्यकार की रचना पढ़ें और अपनी मातृभाषा तथा भारतीय भाषाओं की साहित्यिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जिस समाज की साहित्यिक चेतना जीवित रहती है उसकी सांस्कृतिक चेतना भी जीवित रहती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में विनम्र श्रद्धांजलि।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज 15 सितंबर है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये दिन हमें लोकतंत्र के मूल्यों, उसकी उपलब्धियों और उसके सामने मौजूद चुनौतियों पर विचार करने का अवसर देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 2008 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया में लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करना है। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा, सहभागिता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में नागरिक केवल मतदाता नहीं होता, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सक्रिय भागीदार होता है। मतदान करना, अपने विचार व्यक्त करना, कानून का सम्मान करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के साथ भाग लेना, ये सभी लोकतांत्रिक नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पक्ष भी हैं।

की वास्तविक शक्ति गांव की ग्राम सभा से लेकर संसद तक दिखाई देती है। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय निकायों में आम नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को एक और व्यापक रूप दिया गया है। आज तकनीकी ने लोकतंत्र के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के नागरिकों को सूचना की अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। फेक न्यूज़, गलत सूचना, भ्रामक प्रचार और बिना सत्यापन के संदेशों का साझा करना लोकतांत्रिक संवाद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज लोकतांत्रिक नागरिकता का एक महत्वपूर्ण गुण है सूचना को परखना। और भी लोकतंत्र के द्वारा हमें कई सारे नैतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो हमारे जीवन को वर्तमान परिवेश में और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने अधिकारों से अवगत रहें और लोकतंत्र की गरिमा को किसी भी प्रकार से कोई भी ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का तंत्र, जनता का शासन, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जिसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:30:25 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित कुमार गंधर्व और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है गायन में राग अहीर भैरव। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कलाकार थे कुमार गंधर्व, और इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया गायन में राग अहीर भैरव।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1300

0: 186 किलोहर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:59 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे रतलाम जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी, आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। रतलाम जिले में कल गणेश उत्सव का शुभारंभ उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। गणेश उत्सव के अवसर पर जगह जगह आकर्षक झांकियां और भव्य पंडाल सजाए गए हैं। लोगों ने अपने घर, दुकानों, दफ्तरों में भी विघ्नहर्ता श्री गणेश की स्थापना की। अब अनंत चौदस तक प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक आयोजन होंगे। रात में महाआरती और प्रसादी का वितरण किया जाएगा। अनेक स्थानों पर सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस और रंगोली प्रतियोगिता भी होंगी। कल सोमवार को जिले भर में महिलाओं द्वारा हरतालिका तीज का पर भी पारंपरिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाया गया। इधर जैन समाज के धर्मावलंबी भी चतुर्मास के अंतर्गत पर्युषण महापर्व अत्यंत भक्तिभाव उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी की भक्ति के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनसेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्री तथा स्थानीय विधायक चैतन्य कश्यप ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोक सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है। उन्होंने अपनी सेवा और सुशासन के आदर्श मापदंड स्थापित किए हैं। रतलाम जिले में खरीफ फसलों में अल्प वर्षा के प्रभाव के मद्देनजर कृषि विभाग के दल ने फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सोयाबीन की फसल में कहीं कहीं पर पीला मोशाक की समस्या दिखाई दी, जिसके नियंत्रण के लिए किसानों को जरूरी सलाह दी जा रही है। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप भी देखा गया है। रतलाम जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे के प्रयास से सिविल हॉस्पिटल जावरा में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 मॉड्यूलर OT की स्वीकृति मिली है। विधायक डॉ. पांडे के प्रयासों के फलस्वरूप जावरा में महिला और बाल चिकित्सालय, नवजात शिशु केयर यूनिट, पिपलौदा में सिविल हॉस्पिटल, रिंगनोद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डायलिसिस मशीन जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण सौगात मिली है। सिविल हॉस्पिटल जावरा प्रभारी डॉ. दीपक पालडिया ने बताया कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। सिविल हॉस्पिटल जावरा में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा होने से बड़े ऑपरेशन यही हो सकेंगे। पिछले दिनों रतलाम रेल मंडल का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ, जहां हिंदी दिवस पर आयोजित अखिल रेल स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में रतलाम के 2 कर्मचारियों ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रतलाम मंडल की श्रीमती नीना नागदे मुख्य कार्यालय अधीक्षक ने द्वितीय स्थान तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में जनार्दन कुमार को उपनीय सहायक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को रेलवे बोर्ड की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रतलाम में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पुलिस भर्ती हेतु निःशुल्क कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। 50 बालिकाओं को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी करवाई जाएगी। बीते दिनों स्वामित्व अधिकार निष्पादन अभिलेख पंजीयन अभियान की तैयारियों के तहत कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कलेक्टर कार्यालय सभागार में समीक्षा कर तत्काल हेल्प डेस्क प्रारंभ करने को कहा। अभियान 3 चरणों में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक संचालित होगा। अभियान के अंतर्गत लक्षित भूमि स्वामियों के अधिकार अभिलेखों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पंजीयन कराया जाएगा। कलेक्टर ने बीते पखवाड़े सैलाना वन क्षेत्र में तालाब का पानी खुद पीकर चखा और बोले पानी का स्वाद हिमालयन ड्रिंकिंग वाटर जैसा है। उन्होंने 6 किलोमीटर पैदल चलकर शिवगढ़ वन परिक्षेत्र में विकसित सघन वन और जल संरचनाओं का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 859 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रहा सघन वन 3 वर्षों में 2 लाख पौधों का रोपण कर 56 चेकडैम 45 करोड़ लीटर वर्षा जल संरक्षण का प्रयास भी किया जा रहा है। जिला न्यायालय रतलाम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। लोक अदालत में 2052 प्रकरणों में से समझौता योग्य 1821 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इससे लगभग 2500 व्यक्ति लाभान्वित हुए और कुल 9,87,70,575 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे रतलाम जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की पहली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमने ली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवी ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। बसंत, मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रमिलागंज, आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल वर्मा, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियंका और ऋषि वर्मा। इसके बाद महाराष्ट्र के बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म चक दे इंडिया से इस गीत की, जिसको लिखा है जयदीप सहानी ने, संगीत सलीम सुलेमान का और आवाज़ हेमा सरदेसाई की। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक सेकंड, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नया पारा बिरही से, श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईशर राज सूर्यवंशी, श्री चंद्रकांत सूर्यवंशी, कुमारी प्राची सूर्यवंशी और कुमारी ट्यूशी सूर्यवंशी की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी की। कोलार तहसील भोपाल से ऋषभ चतुर्वेदी, विभा चतुर्वेदी, राजश्री चतुर्वेदी उर्फ गुड्डी, ब्रजेंद्र शेखर चतुर्वेदी उर्फ मिंटू की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म माई नेम इज खान से इस गीत की, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने और आवाज़ दी है राहत फ़तेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध

0: भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का।
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
7: पॉलीथिन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाए। पॉलीथिन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
8: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को लेने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है बेरेडी से, हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर की। इसके बाद रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। मलौट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल और रमेश मिगलानी के साथ साथ धर्मपाल मिगलानी की। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा के साथ साथ निवान शर्मा की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म राजनीति से इस गीत की, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज़ मोहित चौहान और अनंतरा मित्रा की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई अजीत नगर मलोट पंजाब से, छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर की। साथ ही साथ लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीति, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार की। संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, दीपक यादव, उर्मिला देवी, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश करी है फिल्म ओम शांति ओम से इस गीत की, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत विशाल शेखर का है और आवाज़ श्रेया घोषाल और अभिजीत की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें की गई है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे की। इसके बाद छतरी बाजार लश्कर ग्वालियर से तनुष्का माहौर, कृष्णा माहौर, सीमा माहौर, हेमंत कुमार माहौर की। एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान और ग्राम हिंगड़ी आलोट ज़िला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से इस गीत की, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का, आवाज़ नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मारहारा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रशीद वारशी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान की। और इसी के साथ हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई है बुलडाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे की। सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डाबर, बेबी हलीमा डाबर, बेबी जिक्रा डाबर, परदेसीपुरा खंडवा से शेख सईद राही और अनस भाई की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म दबंग 2 से इस गीत की, जिसको लिखा है समीर अंजान ने, संगीत साजिद वाजिद का और आवाज़ राहत फ़तेह अली खान के साथ साथ श्रेया घोषाल की। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का, जो कि हमें मिली है धनौली तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है, जो कि दादरी गेट भिवाणी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा की। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी, रीमा, रेणु एवं रोनिका यादव की। इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से इस गीत की, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज़ राहत फतेह अली खान की है। आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करके जो कि हमें प्राप्त हुई है नेहरू चौक पैठण से, डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव की, जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता जावत यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ यादव और संगीता यादव की। इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म रॉकस्टार से इस गीत की, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत एआर रहमान का और आवाज़ मोहित चौहान की है। आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
1: अभियंता दिवस के अवसर पर अब से कुछ देर बाद भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितम्बर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश में ग्रामीणों के स्वामित्व अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 17 सितंबर से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान 2026 शुरू होगा। इसके तहत 50 लाख से अधिक ग्रामीणों को निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 19 सितंबर को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में होगा। और पुरुष क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
3: श्रोता साथियों, भारत हमारा उत्सवों का देश है, परंपराओं का देश है, तीज त्योहारों का देश है। हमारे यहाँ रोज एक नया त्यौहार होता है। हम उत्सवों में जीना जानते हैं, तो इन उत्सवों की जब शुरुआत की गई होगी तो इनके पीछे कुछ मकसद रहे होंगे, इन देशों के साथ इन कुछ संदेश भी जुड़े हैं। इन्हीं उत्सवों को मनाते हुए हम उन संदेशों को फिर से दोहरा लें तो इन पर्वों की सार्थकता है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हाँ जी नमस्कार।
4: हाँ भैया नमस्कार, वेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
3: हाँ जी योगेश जी कैसे हैं?
4: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं। पर जी तो विराजमान हो रहे हैं आज तो बढ़िया, एक अच्छा धार्मिक माहौल है, भक्तिमय माहौल है।
3: हाँ। और इस कार्यक्रम में हम आज बातें कर रहे हैं कि जो सामाजिक समरसता का संदेश हमारे तीज त्योहार पर्व देते आए हैं वो कहीं खोता जा रहा है, ऐसा लगता है क्या आप? या हमारे जो पर्व हैं, तीज त्योहार हैं, वो कौन सा संदेश देते हैं, वो संदेश आप दोहरा सकें तो बताएं।
4: बिल्कुल भैया, जो भी पर्व और त्योहार हम मनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको सामाजिक रूप से जोड़ने का काम करता है। जैसे अभी गणेश उत्सव ही ले लीजिए, रोज पूजा अर्चना करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भक्ति भाव जगाता है लोगों में, आपसी सामाजिक सद्भाव जगाता है और ये हमेशा एकत्र करता है लोगों को, तो ये हमेशा देश के लिए एक अच्छा संकेत होता है।
3: इसका मूल उद्देश्य संभवतः यही रहा होगा कि जब बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को सार्वजनिक तौर पर मनाने का जो मकसद है वो यही रहा होगा कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, एक दूसरे से जुड़ें।
4: हाँ जी, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि देखिए पर्व हम मनाते हैं खुशियों के लिए, आनंद के लिए, भक्ति के लिए, तो वो माहौल फीसा न पड़े, जैसे अभी गणेशोत्सव ही मना रहे हैं तो मूर्तियां इतनी बड़ी बड़ी न बनाए कि उससे जन हानि धन हानि या किसी भी तरह की हानि होने की स्थिति हो। और जो भी एक हम लाउड स्पीकर वगैरह का भी जो उपयोग करते हैं एक सामान्य रूप में करें, हमको भक्ति ही करना है और इन सब चीजों से बचते हुए करेंगे तो ही हमारा आयोजन सफल रहेगा।
5: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे विषय को उठाया है कि ये पर्व, इन पर्वों के माध्यम से हम अपनी धरती माँ की भी सेवा कर सकते हैं, हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं
4: जी।
5: प्रतिमाओं के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से वो संदेश उजागर किए जा सकते हैं जो शायद संभवतः हमारे शब्दों से ना पहुंच पाते हों।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आप सुन रहे हैं।
1: मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं?
1: बढ़िया सर, सेवन सर बोल रहा था।
0: जी हाँ नमस्कार।
1: अरे सर नमस्कार, गणेश उत्सव की आपके लिए, आकाशवाणी परिवार के लिए, सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: हमारी ओर से भी हमारे सभी सुनने वालों को इन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
1: जी सर।
0: तो सोनी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, इन पर्वों के पीछे जो संदेश है, वो संदेश अगर आप अपने शब्दों में हमसे व्यक्त कर सकें, हमारे श्रोताओं को बता सकें, तो वो होता है।
1: अपने जो तीज त्यौहार आते हैं
0: जी,
1: तो अपने से तो जोड़ते ही हैं और भाईचारा का एक संदेश भी देते हैं, इससे प्रेम भी बढ़ता है, परिवार में दूसरे लोगों से प्रेम बढ़ता है, मिलजुल के अपने पर्व और त्योहार मनाना चाहिए अपने लिए।
0: और इन पर्वों को मनाने का उद्देश्य, इन उत्सवों को मनाने का उद्देश्य यही है जो समाज को जोड़ने का तो काम करते ही हैं, हम उन संदेशों को भी लोगों तक पहुंचाएं। पहले झांकियों में संदेश हुआ करते थे, शायद आजकल वो झांकियां नहीं बन पा रही हैं, आप ये मानते हैं?
1: अभी तो सर घर में तैयारी जो है चल रही है।
0: जी जी,
1: गणेश स्थापना की और पंडाल भी जो सज चुके हैं, तैयार हो चुके हैं।
0: पंडालों में भी इस बात का ध्यान रखें कि मर्यादित भजन बजाएं, बहुत तेज आवाज में, जिससे परेशानी ना हो रात के 10 बजे के बाद, जैसे कि हमारे नियम बनाए गए हैं कि
1: तो सर बनना चाहिए, लेकिन क्या है कि जो डीजे वगैरह में बहुत ज्यादा तेज आवाज है कि वो डिस्टर्ब करती
0: है। क्योंकि उन डीजों में इतना ज्यादा शोर हो जाता है ना,
1: और खास तौर से सर बच्चों की जो पढ़ाई है जो उससे प्रभावित हो जाती है।
0: देखिए पढ़ाई के अलावा भी मरीजों के लिए भी ये जो डीजे हैं तो बहुत ज्यादा उपयोग ना करते हुए सीमित मात्रा में करें। हमारी भजन मंडलियां पहले बैठा करती थी, बढ़िया भजन गाए जाते थे।
1: जी सर जी
0: जी जी, तो इस तरीके से ऐसे आयोजन करें हम, जिनके माध्यम से हम अपने समाज को एक संदेश दे सकें, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण हो सकें।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: जी हम किन से बात कर रहे हैं ये हम जानना
1: हम
0: चाहते हैं।
1: मिठहुआ धाम सरकार के निकट से ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कृष्ण नामदेव बात कर रहे हैं। हाँ
0: कृष्ण जी
1: जी,
0: क्या उम्र है आपकी?
1: हमारी उम्र अभी 13 साल की है।
0: अच्छा जी, तो 13 साल की
1: हाँ
0: उम्र में आपको रेडियो का शौक कैसे लगा ये बता दें पहले।
1: हाँ मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ रेडियो। मेरे पिताजी है ना, जो श्रीमान चंद्रभान नामदेव, वो बचपन से रेडियो सुनते, और मैं भी बचपन से रेडियो सुनते आ रहा हूँ।
0: चलिए, रेडियो का संस्कार आपको अपने पिता से मिला, विरासत में मिला, ये बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ अभी एक
0: अब
1: रेडियो खराब हो गया था तो मैंने पापा से जिद करके दूसरा रेडियो मंगवाया है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भाई ये मुझे बताएं कि
1: क्या
0: जो त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, जैसे अभी गणेश उत्सव की धूम होने वाली है, तो
1: हाँ
0: इन पर्वों का जो संदेश है, क्या संदेश हो सकता है आपके हिसाब से, आपके मायने से?
1: हमारे हिसाब से तो ये संदेश हो सकता है कि जो धार्मिक त्योहार है वो आजकल खत्म होते जा रहे हैं, और गणेश चतुर्थी सबसे प्रथम भगवान गणेश जी ही हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। कोई भी शुभ काम करो, प्रथम वंदना तो उन्हीं की जाती है। हाँ
0: इनकी प्रथम वंदना तो की जाती है, लेकिन गणेश उत्सव का जो संदेश है वो क्या हो सकता
1: हाँ
0: है?
1: वो गणेश उत्सव का ये संदेश है कि धूमधाम से गणेश उत्सव मनाएं, और गलियों में, हमारी गली में तो गणेश जी बैठेंगे।
0: तो ये जो पर्व हैं, हमें ये लगता है कि इन पर्वों में प्रकृति पर्यावरण का संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ
0: ये संदेश होना चाहिए कि हम सामाजिक समरसता के साथ में एक दूसरे से जुड़ें।
1: हाँ
0: डीजे पर इतना जोर से गीत भजन ना बजाएं जिससे दूसरों को परेशानी हो।
1: हाँ ये डीजे है ना जो बहुत तेज बजता है, इससे प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण भी होता है।
0: जी हाँ, तो ये इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम कोई पर्व उत्सव मनाएंगे तो हमारा इन पर्वों को मनाने का आनंद भी दोगुना हो जाएगा और इन पर्वों को मनाने की सार्थकता भी होगी।
1: ये
0: किया?
1: जिसको हार्ट की बीमारी है उसको दिल का दौरा भी पड़ जाता है इससे।
0: जी हाँ जी हाँ, डीजे की आवाज़ कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे इस तरह की घटनाएं भी हमें सुनाई दी है।
1: हाँ
0: चलिए, आपने फ़ोन किया, कृष्ण नामदेव जी आपको देते हैं धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: लाला राम कुशवाहा।
0: लाला राम कुशवाहा
1: जी जी, शिवपुरी से मध्य प्रदेश।
0: तो लाला राम जी, ये बताइए कि आज जब हम हमारे पर्वों को मनाते हैं तो उनके पीछे छुपा हुआ संदेश कहीं हमारी आंखों से उजल तो नहीं हो जाता, धूमिल तो नहीं हो जाता? इन पर्वों को मनाने का जो उद्देश्य होता है या जो मकसद रहा होगा इन पर्वों को शुरू करने का, वो आपके हिसाब से, आपके अंदाजे से क्या हो सकता है?
1: इस विषय में कह रहे हैं आप, गणेश जी मनाते हैं जो?
0: हाँ जी, गणेश उत्सव की ही बात अगर हम करें तो इसके बारे में ही बताएं।
1: सर, इनकी पहले ही पूजा होती है, मान किसी भी कोई कार्यक्रम करो पहले पूजा इनकी मान रहती है।
0: इनकी पहली पूजा तो होती है, लेकिन जो गणेश उत्सव सार्वजनिक तौर पर मनाने का बाल गंगाधर तिलक जी ने जिस अभियान को शुरू किया था, उस अभियान में आजकल कुछ कुरूतियां भी जुड़ती जा रही है, जैसे कि शोर शराबा हो रहा है, ये भी देखने में आ रहा है कि एक दूसरे से होड़ होने लगी है, प्रतिस्पर्धा होने लगी है।

0: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते सर।
0: आपका परिचय हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल, कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, और बात हो रही है शिवम जी से।
0: जी हाँ,
1: ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से मैं हूँ, विपिन कटारे।
0: हमारे इन पर्वों को मनाने का जो मकसद रहा है, या इन पर्वों की जब शुरुआत हुई थी तो जिन उद्देश्यों को लेकर इन पर्वों का सार्वजनिक प्रचलन शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, उन संदेशों पर आज लगता है कि थोड़ा सा विराम लग चुका है, थोड़े से हम भटक चुके हैं।

0: क्या कहते हैं इस विषय में?
1: हाँ, ये बात तो सर सही है जो आप बता रहे हैं। उत्साह तो उसी रूप में मतलब मना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। जैसे कि जो पुरानी चीजें बची हुई हैं उसमें ये कह सकते हैं कि जो मनाने का पहले का जो उद्देश्य होता था गणेश उत्सव को, शायद कुछ लोगों को अभी उसके बारे में उतना जानकारी भी नहीं है। उस उत्सव को मना तो रहे हैं लेकिन उतना गहराई से उस चीज को समझते नहीं है।
0: डीजे का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, मैं वही उसी को बताना चाह रहा था। इसमें दो तीन चीजें जुड़ गई हैं जो कि सही नहीं है। पहला तो ये कि डीजे, बिल्कुल आपने सही कहा, साउंड। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि पहले क्या होता था, 10 साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं कि शायद विसर्जन के दिन ज्यादा, फिर जिस दिन स्थापित होता था उस दिन डीजे चलाया जा रहा था, लेकिन अब तो 10-11 दिन मतलब जब तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा तब तक ही ये पर मतलब हर दिन पर डे यही हो रहा है, तो ये भी गलत है। और दूसरा एक और चीज भी मैंने देखी है कि जब गणेश विसर्जन होता है उस दिन इस उत्सव को नशे के साथ मनाया जाता है। मतलब जब वो जाएंगे विसर्जन के लिए तो उसमें ये भी नोटिस किया गया है कि गांव में या फिर शहरों में सभी जगह पे कि जो नाच गाना होगा वो एक नशे के साथ शराब पी के किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें भी हैं जो गलत हैं, शायद इसे नहीं समझ पा रहे हैं बहुत सारे लोग।
0: जी, तो हम तो यही चाहते हैं कि तो ये ना हो, हमारे जो पर्व मनाने का जो उद्देश्य है कि हम उसमें आनंदित हों, खुश हों, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ें।
1: और अगर बुजुर्गों के हिसाब से या फिर जो पुराने रीति रिवाजों से हम इस गणेश उत्सव को मनाएंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। और
0: ध्यान और भी रखा जा सकता है कि हम इन उत्सवों के माध्यम से अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, हमारी झांकियों में इन संदेशों को हम दोहरा सकते हैं, है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही बात है। और अगर अपने गांव में या अपने शहर में 10 जगह गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और अगर एक ही जगह अगर इस पुराने रिवाज से या फिर पुरानी जो परंपरा उस तरीके से मनाने की शुरुआत करें तो धीरे धीरे फिर सभी लोग देख के भी उस तरफ आ सकते हैं।
0: जी हाँ, उसमें ये होता है कि जैसे हमने ये सुना है महाराष्ट्र में ये परंपरा रही है कि एक गाँव एक गणेश, तो सभी लोग आपस में जुड़ के एक साथ जब पूजा अर्चना करेंगे, एक साथ बैठेंगे, भजन कीर्तन होगा, ढोलक पर बैठकर जब वो भजन गाएंगे तो उसका आनंद भी अलग होगा। अभी ये होने लगा है कि प्रतिस्पर्धा होती है कि पंडालों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी है।
1: अब तो चार चार पांच पांच घर के एकत्रित होके भी उत्सव को मना लेते हैं, ऐसा भी होता है।
0: जी, कि इस पर्व को मनाने का जो उद्देश्य है वो जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। ये आनंद का उत्सव है, ये खुशियों का उत्सव है। हम सभी के भीतर वो आनंद वो खुशियाँ प्रवाहित हो, हम सबके कल्याण की कामना करें। इसी बात पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक गीत आपको सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: बिल्कुल, धन्यवाद। और सभी सुनने वालों को आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: हाँ जी।
1: हाँ सर, मैं अरविंद बैरागी कुकड़ेश्वर जिला नीमच से बोल रहा हूँ।
0: हमारे पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, इनके पीछे जो संदेश होता है, उन संदेशों को आज फिर से एक बार दोहराने की ज़रूरत है।
1: जी सर।
0: क्या लगता है आपको इस मामले में?
1: जी, भारतीय परंपरा में तो पर्वों का बहुत ही अधिक महत्व है सर, और हर पर्व हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, और पर्वों के आधार पर हम

0: अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ऐसी विविधता हमारे पर्वों में हमेशा देखी गई है सर।
1: तो बताइए, हमारे गणेश उत्सव का कैसा स्वरूप आप देखते हैं, कैसा स्वरूप होना चाहिए?
0: जी, भगवान गणेश तो प्रथम पूजनीय है और मानव मनुष्य को ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए कि भगवान गणेश से हम सीखें। भगवान गणेश के बारे में हम जितना समझ सकते हैं उतना, जितना समझने की कोशिश करने उतना कम लगता है। भगवान गणेश की जो का जो स्वरूप है वो ऐसा है सर कि हम इससे जीवन को सार्थक बनाने की कई विधियां खोज सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इन पर्वों का धार्मिक मकसद रहा है, धार्मिक उद्देश्य रहा है, लेकिन उससे परे भी समाज को जोड़ने के लिए, समाज में उन संदेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए जिनके माध्यम से हम अपनी धरती का, हमारे प्रकृति का, पर्यावरण का, देश का, समाज का कल्याण कर सकते हैं, वो भावनाएं भी इनसे जुड़ी रही हैं। तो इन भावनाओं को एक बार फिर से दोहराएं, फिर से अपने जीवन में उतारें, क्या लगता है आपको?
0: हाँ सर, भगवान गणेश का जो ये पर्व है तो सर ये जो है ना, हमें ये शिक्षा देता है कि हम प्रकृति से जुड़े रहे और प्रकृति से जुड़ना यानी कि पर्यावरण को भी बचाना होता है। इसी प्रकार कई ऐसी विधाएं हैं उससे हम भगवान गणेश के स्वरूप से सीख सकते हैं आज के भौतिक युग में।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार सर, मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 से।
0: सुरेश कुमार सारथी जी बेमेतरा से बोल रहे हैं।
1: जी छत्तीसगढ़ से सर।
0: हाँ जी, ये बताइए कि हमारे जो संदेश देते हुए पर्व हैं, त्यौहार हैं
1: जी,
0: जैसे कि गणेश उत्सव की अगर हम बात करें, तो इनके इस पर्व को मनाने का जो सामाजिक तौर पर जोड़ने का जो संदेश है वो क्या हो सकता है, आप बताइए।
1: जी सर, देखिए सर, गणेश का जी का यह पर्व एकता, विश्वास और भाईचारे का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाने जा रहे हैं सर, जिसे पूरा भारतवासी हर्ष उल्लास के साथ पूजा याचना कर सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सभी का जीवन सुखमय रहे, धरती पर सबसे पहले परम पूज्य गणेश जी की प्रथम पूजा किया जाता है सर।
0: इन पर्वों का सुनिए तो,
1: इन पर्वों में क्या है सर, जो नशे पदार्थ की जो जिसको लत है वह अपनी क्रूरता दिखाते हैं सर, और दुश्मनी को थोड़े से ज्यादा अंजाम दे देते हैं जो नहीं करना चाहिए। इस पर्व में सभी को एकता के साथ रहना चाहिए, एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए सर, किसी भी प्रकार की भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि जीव का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: हमारे समाज का देश का भला हो, ऐसी भावनाओं वाली झांकियां बैठानी चाहिए, ऐसी भावनाओं के साथ हम इन पर्वों को मनाएं, हम एक दूसरे से जुड़ें, खुल के एक दूसरे के उत्सवों में भाग लें। जैसा
1: सर,
0: आपने
1: सर,
0: कहा कि नशे का प्रयोग,
1: पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक एकजुटता के साथ पर्व को मनाना चाहिए सर।
0: जी हाँ, तो एकजुटता की भावना हमारे भीतर जन्मती रहे, फलती फूलती रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ में ये पर्व मनाने का निर्णय लिया गया होगा। आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारथी परिवार और सारथी समाज की ओर से गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई सर, आपके पूरे केंद्र को।

0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार
0: सर जी। नमस्कार।
1: जी। आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
0: जय हीरामन बाबा। रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ सर। जी सर,
1: वो
0: जी सर।
1: उद्देश्य क्या हो सकता है आपके मायने से? आप बताइए, इनमें ऐसी कौन कौन सी बातें जोड़ी जा सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अब आज के समय में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो गलत है
0: वो मानते नहीं है।
1: जी? कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें बदलना चाहिए आपको लगता है?
0: सर हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग जैसे अभी त्योहार समाप्त होने के बाद में जो भंडारा भोजन प्रसाद करवाते हैं, उनमें से उन लोगों को देखा जाना चाहिए सर, जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। उन लोगों को आप भंडारा करवाइए, भोजन खिलाइए, तो वो ही असली सुकून देता है सर असली जिंदगी में। क्योंकि जिसके पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है और हम उसको भरपेट खाना खिलाएंगे, तो सर उसकी आत्मा बहुत दुआएं देगी,
1: चलिए,
0: ये मेरा
1: आपने एक
0: मानना
1: बहुत
0: है।
1: बहुत अच्छी बात की ओर इशारा किया है। ये आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे जो प्रकाश की या दिए की आवश्यकता वहाँ है जहाँ अंधकार हो,
0: जी
1: जहाँ उजाला हो, वहाँ आप 100 दीपक और जला देंगे तो उस दिए की, उस उजाले की सार्थकता नहीं होगी।
0: जी अब सर जिसके घर में पर्याप्त लाइट है, सब कुछ है, उनको तो उसकी जरूरत है ही नहीं है। आप उन लोगों तक प्रकाश पहुंचाइए जो दूर दराज गांवों में अंधेरे में बैठे रहते हैं। अगर आप उनके लिए लाइट प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो वो बात कुछ अलग ही होती है।
2: अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 600 से अधिक भागीदार, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। प्रदेश के ग्रामीणों के स्वामित्व अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 17 सितंबर से स्वामित्व अधिकार अभियान शुरू होगा। इसके तहत 50 लाख से अधिक ग्रामीणों को निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पिछले एक माह में 11 जिलों में नए आधार केंद्र शुरू किए गए हैं। इनमें बैतूल, सतना, अलीराजपुर, देवास, धार, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर और रतलाम शामिल हैं। अगले माह 10 और जिलों में आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन आज से शुरू हो गया है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए 1100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत सुनेंगे आशा भोसले के स्वर में, फिल्म का नाम आए दिन बाहर के। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और रोहन। अगली फरमाइश मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर और एकांश गवाड़कर। इन्हीं के साथ बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन गवाड़कर। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अगला गीत
1: आप सुनेंगे फिल्म मिशन कश्मीर से, स्वर शंकर महादेवन और जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों के हैं। फिल्म का नाम मिशन कश्मीर। गीत लिखा राहत इंदौरी ने, संगीतकार शंकर एहसान लॉय। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सिंहपुर बड़ा से हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म चांदनी से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिवहरी। फरमाइश हमें आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिश शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। अगली श्रोता बुरहानपुर मोहत से, मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज, रोज़मीन तैमूर, रीना, रोजू बाई तड़वी, सनी बाबू, परु तड़वी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अगला गीत सुनेंगे शेखर रविजानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन के स्वर में। गीत लिखा अन्विता दत्त ने, संगीतकार विशाल शेखर। फरमाइश हमें आई है धामणी मनोरा महाराष्ट्र से, श्रोता है तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुड डेरे। अगले श्रोता मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप और आरजू जाजूरिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म धड़कन से अलका याग्निक के स्वर में। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, शोएब खान, साइमा खान, आफिया खान, शाहिद और रऊफ। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 28वां भाग।

अब तक की कहानी यूं है। गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जमुनिया ने गीता के इस उपदेश को जीवन में उतार लिया है। निष्ठा, सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करते चलो और लक्ष्य से भटके बिना आगे बढ़ते जाओ तो लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी ही, फल भी मीठा मिलेगा। इस बात को समझने के लिए जमुनिया के जीवन से बेहतर उदाहरण क्या होगा? पति की असमय मृत्यु, निखट्टू देवर की दगाबाजी, आर्थिक अभावों का पहाड़ सा बोझ सिर पर, यही था जमुनिया का शुरुआती जीवन। पर वो लड़ी हालातों से पूरी हिम्मत के साथ। निविड़ अंधकार भरे वर्तमान से जूझकर दोनों बच्चों को उज्जवल भविष्य दिया। बेटा तेजस कलेक्टर और बेटी रूपस डॉक्टर है। पारिवारिक स्तर पर जमुनिया की उपलब्धियां जितनी शानदार हैं, उतनी ही शानदार हैं उसकी उपलब्धियां सामाजिक स्तर पर। आज जमुनिया उसके गांव फतेहपुर की कामयाब सरपंच है, जिसने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए गांव वालों के सहयोग से फतेहपुर गांव का कायाकल्प कर दिया है।

0: इस बरस तो बड़ा कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा चंदू की अम्मा।
1: जलावन की आधी लकड़ी हाथ तापने में फूंक दी तुमने।
0: अरे अब तापन के लाने तो लकड़ी और रुपले ही जलाएंगे ना। अरे कोई गैस पर हाथ तापता है का?
1: अरे सुमित्रा जरा चाय तो बना दे।
2: ओ अम्मा अभी लाती हूँ।
0: एकदम मेरे मन की कह दी तुमने तो। अरे मासाम अरे कितने को निकल पर इतनी ठंड में। अरे बेटो चाय पी जाओ मासा।
3: अरे सुनाओ कक्का। अरे क्या हाल है? अरे घर में सब ठीक है ना?
0: अब हमारा हाल तो एकदम फर्स्ट क्लास मासा। पर जे तुम्हारा मुंह काय लाने लटका करो मासा पे। अरे लो की तो रैया की ना का?
3: अरे अरे भैया कोई खास बात नहीं है।
0: ए मासा झूठ ना बोलो मासा। कच्चु बात तो है।
1: लो मास्टर चाय पियो।
0: मास्टर कच्चु बताने जैसो हो तो बोलो। अरे बोल कर मन हल्का हो जाते है।
3: अरे भैया 20 साल हुए हमें इस गांव में आए। शहर में पैदा हुए पले बढ़े। सरकार ने गांव में नौकरी दे दी और हम गांव के ही होकर के रह गए।
0: हाँ जे तो ठीक कही वहां साहब आपने। अरे हमको तो लग रहा था कि शहर के और मास्टरों जैसे जे भी भग जाएंगे तबादले की जुगाड़ करके। अरे पर तुम ना भागे मास्टर।
3: सच्ची कह रहे भैया हमने कोई जुगाड़ ना की। बस ईमानदारी से पढ़ाते रहे।
0: सो तो सारा गांव जानते मात साहब। अरे इज्जत भी करता है आपकी। हाँ
3: अरे भैया अभी प्रमोशन हुए पर हमारा नहीं हुआ।
0: का?
3: हमारा रिकॉर्ड ठीक। सीनियरिटी में भी हम एक नंबर पाओ।
0: एक नंबर
3: पर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ।
0: अरे मात साहब अजय तो जंगल राज जैसी बात भाई है? अरे पूछो अपने बड़े अफसरों से।
3: अरे पूछो तब भैया जब वो मिले।
0: का?
3: चिट्ठियों का जवाब तक तो देते नहीं।
0: अरे मां साहब अरे फिकर ना करो मां साहब। अरे ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं है।
3: हाँ भैया उसी ऊपर वाले के घर यानी मंदिर जा रहे भैया। जा पूछने के लिए कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ।
0: अरे
3: चलता हूँ भैया। राम राम।
0: अरे

0: काय जे पंचर ठीक करने वाला किधर निकल लिया दुकान बंद करके?
1: अरे भैया ठंड है। अरे सोया होगा रजाई ओढ़ के, और का। भैया आरटीआई कार्यकर्ता का कमाल
2: का है भैया, जे आरटीआई कोनो पॉलिटिकल पार्टी है का?
0: अब पता नहीं, जयंत

0: तो बाबू आते होंगे पंचायत दफ्तर, उनसे पूछ लेना।
1: जे ठीक है भैया। अरे भाई आई गए।
2: राम राम भैया।
3: राम राम
4: राम राम, राम, राम भैया।
2: आप लोगों को पंचायत भवन में अखबार पढ़ने के लिए जुटते देखता हूं ना, तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान की सफलता देख बहुत खुशी होती है।
3: जयंत भैया, आपकी और सरपंच जी की मेहनत का फल है और का।
2: जितने ज्यादा लोग पढ़ना सीखेंगे उतनी ही ज्यादा देश की शक्ल निखरेगी
3: और का,
2: और प्रजातंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत होंगी।
3: जयंत भैया तनिक एक बात बताइए।
2: पूछो।
3: जे आरटीआई कौन सी पार्टी है? अरे हमने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना। अरे जे अखबार में लिखा है उसके कार्यकर्ता का कमाल, जे देखो।
2: आरटीआई कोई पार्टी नहीं है।
3: ए?
2: हाँ, एक कानून है।
3: कानून?
2: राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार।
0: जे कौन सा कानून है भैया?
2: आजादी के बाद 58 साल तक जो ना हो पाया, इस सरकार ने ये कानून बनाकर वो कर दिखाया।
0: अरे वाह, इतने कमाल का कानून है ये।
2: हाँ, जनता सरकार चुनती है।
0: हाँ बिल्कुल।
2: सरकार क्या करती है या नहीं कर रही है ये जानने का जनता को अधिकार है या नहीं।
1: माँ भैया बरोबर बरोबर, ये तो है।
2: सूचना का अधिकार कानून यही अधिकार जनता को देता है।
3: अरे भैया इतना बढ़िया कानून, और माँ साहब को क्यों नहीं पता अब तक?
2: ऐसा हो नहीं सकता। अक्सर होता यह है कि कानून का नाम सुना होता है पर इसके इस्तेमाल का तरीका पता नहीं होता।
3: ये तो है। जयंत भैया, माँ साहब को भेजूंगा मैं आपके पास। ठीक है?
2: ठीक है,
3: अब मैं चलता हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम जयंत भैया।
5: राम राम भैया। राम राम।
6: जयंत जी।
2: हाँ।
6: नरेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव में किए जाने वाले कामों की रिपोर्ट देख ली है ना आपने?
2: हाँ, रिपोर्ट भी देख ली है और मजदूरी के भुगतान का हिसाब भी एकदम ठीक है।
6: अच्छा, अरे आइए आइए मास्टर जी, आइए बैठिए।
3: अच्छा,
6: रामदीन भैया, तीन ग्लास पानी लाना। हाँ कहिए, कैसे आना हुआ?
2: अरे सुबह जब मैं दफ्तर आया तो अखबारों वाले स्टैंड के पास सूचना का अधिकार कानून की बात कर रहा था, तो
7: कक्का जी ने कहा कि मां साहब आप जयंत जी से मिल लो, सो भैया चला आया।
2: हाँ।
6: सूचना का अधिकार कानून, आप मिल ले? कुछ समझ नहीं आ रहा कि मसला क्या है।
7: अरे छोड़िए छोड़िए, अब आप क्यों परेशान होती हैं?
6: ऐसा ना कहें, आप हमारे साथ ही हैं, आपकी परेशानी हमारी भी तो है।
2: हाँ जमुनिया जी ठीक कह रही हैं। मास्टर साहब आइए, यहाँ बैठिए आप, और अब विस्तार से बताइए मामला क्या है।
6: हमसे जो बन पड़ेगा जरूर करेंगे।
7: ऐसा है भाई के विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन हुए, हम सीनियर मोस्ट हैं, हमारा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, पर प्रमोशन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है।
2: अरे ये तो सरासर अन्याय है।
6: विभाग के बड़े अफसरों से मिले?
7: मिले हम,

0: भैया ये जरा हमारी पर्ची साहब तक पहुंचा दो ना, बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं।
1: अरे कोई काम नहीं क्या हमारे पास? चले आते हैं, वो उठाए तीसरे चौथे दिन। लाओ पर्ची।
0: ये लो भैया, बड़ी मेहरबानी भैया।
2: जी जी सर। जी नमस्ते सर।
0: साहब। नमस्ते साहब जी। मैं सर एन के गुप्ता हूँ सर।

0: फतेहपुर विद्यालय में यूडीटी।
1: ओह, तो वो तुम हो। प्रमोशन ना होने की चिट्ठियां और शिकायतें भेजना बंद करो।
0: सर, हमारा रिकॉर्ड, हम सीनियर मोस्ट हैं सर।
1: पता है हमें, काम धाम करते नहीं हो और प्रमोशन चाहिए।
0: सर, हमारा रिजल्ट जिले में सबसे अच्छा है सर।
1: मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? देखिए, आगे से चिट्ठी लिखी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ।
2: ये तो सरासर हिटलर शाही है। वो कहावत है ना, जबरा मारे रोने ना दे।
3: शांत हो जाइए आप मास्टर जी।
4: जी,
3: अब आप निश्चिंत हो जाएं। अब हम आपको सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग कर न्याय दिलाएंगे।
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप मत कीजिए। वे हमारे उच्च अधिकारी हैं, गुस्सा होकर मेरा कुछ नुकसान भी कर सकते हैं।
2: देखिए मास्टर जी, सरकार ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कानून के रूप में आपको हथियार दिया है। हथियार के इस्तेमाल से डरेंगे तो न्याय कैसे पाएंगे?
3: चलिए एक काम करते हैं। हमने पहले ही कहा कि ये केवल आपकी नहीं, हमारी सांझा लड़ाई है। अब इस हथियार का इस्तेमाल हम करेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे।
2: हाँ जमुनिया जी, एक मास्टर जी ही क्यों, हमारे फतेहपुर गांव का हर निवासी, मुझे लगता है इस कानून के बारे में जाने और इसके साथ अगर अन्याय हो तो खुद लड़ सके न्याय की लड़ाई।
3: एकदम ठीक, मैं आज ही शाम को गांव वालों की सभा बुलाती हूँ। चलिए सब लोग बैठ जाइए शांति से। आज की सभा हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कानून की जानकारी सभी गांव वालों को देने के लिए बुलाई है।
5: जी तो बहुत ही अच्छी बात है।
3: मैं जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपको इस कानून के विषय में बतलाएं।
2: भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सूचना का अधिकार कानून के बारे में बताने वाला हूं। प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कानून है ये, जो जनता को उसके द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा किए गए कामों और ना किए गए कामों दोनों को जानने का अधिकार देता है।
5: ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया।
6: अरे भैया, ये तो बताओ कि वो जानकारी हमें राष्ट्रपति देंगे, प्रधानमंत्री देंगे कि मुख्यमंत्री देंगे?
5: अरे अरे अरे भौजी, तने गम तो खाओ, भाई तो बता रहे वो।
2: अरे सुनो, हमारी सरकार कई विभागों, उनके कई दफ्तरों और उन दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से काम करती है।
7: भैया पर जयंत भैया, जे कैसा पता चले कि कौन सा अधिकारी जानकारी देगा?
2: एक दफ्तर में कई अधिकारी होते हैं, उनमें से किसी एक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। हाँ, जिसकी सूचना सूचना पटल पर दी जाती है। उसका काम है आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आपको प्रदान करना।
8: अरे तो उसके लिए तो अर्जी देना पड़ती होगी ना। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना तो पंचायत ने प्रौढ़ शिक्षा क्लास में सिखा दिया है, पर अर्जी लिखना तो
2: जरूरत पड़ने पर लोक सूचना अधिकारी आपको अर्जी लिखवाने में भी मदद करता है।
7: अरे ये बढ़िया बात है भैया, वरना ये अनपढ़ आदमी क्या करेगा बेचारा है।
2: देखो, इस कानून ने सूचना का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़।
7: अरे वाह, इस कानून ने सूचना का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़।
5: ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, बहुत ही।
7: अर्जी लिखते कैसे हैं भैया?
5: हाँ जी, और बता दे भैया।
2: अरे कोई लंबी नहीं,

0: बल्कि छोटी सी अर्जी हो जिसमें गिने चुने शब्दों में आप चाहें तो सवालों की शक्ल में जानकारी पूछ लें। नाम मात्र की फीस भरनी होती है जो आप चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर और तो और नगद भी भर सकते हैं।
1: अच्छी बात है भैया, नगद देना तो है।
2: गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले नागरिकों को ये नाम मात्र की फीस भी माफ होती है।
0: हाँ, ये अच्छी सूचना दी तुमने जमुनिया। अर्जी की तारीख से 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी आपको आपकी चाही जानकारी देगा।
1: अच्छा अच्छा।
3: अरे भैया, अगर लोक सूचना अधिकारी वो जानकारी ना दे तो?
2: उस पर 2,500 रुपए रोज की दर से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
3: हाय भैया।
0: हाँ, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, ज्ञापन, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, लॉग बुक आदि की सत्यापित प्रतियां मांग सकते हैं। और तो और निर्माण कार्यों की सामग्री के नमूने भी मांग सकते हैं।
2: निर्माण कार्य, निर्माण सामग्री या दस्तावेजों को खुद अपनी आंखों से निरीक्षण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4: पर जमुनिया दीदी, सूचना अधिकारी आधी अधूरी या गलत जानकारी भी तो दे सकता है।
1: ये तो सांची कही दी तुमने।
0: अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा होने पर आप अपीली अधिकारी के पास अपील भी कर सकते हैं।
2: और तो और, अपीलीय अधिकारी की कार्रवाई से असंतोष होने पर आप उसके ऊपर के अधिकारी यानी सूचना आयुक्त को शिकायत कर सकते हैं।
3: का हमारे राज्य में भी है सूचना आयुक्त?
0: हाँ, हर राज्य में है और इनसे ऊपर होता है केंद्रीय सूचना आयोग।
5: अरे वाह भैया, ये तो बड़ो बढ़िया हथियार दे दियो सरकार ने हमें।
4: लगाते रहो अर्जी पे अर्जी,
6: अर्जी पे अर्जी, अर्जी पे अर्जी,
3: मांगो जानकारी जितनी मर्जी।
0: अरे ये तो हथियार का गलत इस्तेमाल हो जाएगा।
4: अच्छा भी ठीक कही आपने जयंत भैया।
2: हमें सरकार से जानकारी पूछने से पहले अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमें उस जानकारी की वाकई जरूरत है क्या? क्या उस जानकारी से हमें या समाज को कोई लाभ होने वाला है?
0: समस्या से जुड़ी ऐसी जानकारी पूछें जो समस्या हल करने में मदद कर सके।
2: पता ही नहीं चला, रात के 9 कब बज गए। चलिए आज की सभा बर्खास्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।

0: नमस्ते बहन जी,
1: नमस्ते नमस्ते मास्टर जी,
2: नमस्ते मास्टर जी,
0: बच्चों नमस्ते करो, नमस्ते
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
2: कैसी चल रही है बच्चों की पढ़ाई?
4: जी बस अच्छी चल रही है
5: मास्टर जी।
4: हाँ जी,
5: आने वाले सोमवार को हम जिला मुख्यालय जा रहे हैं।
4: अच्छा अच्छा,
2: आप अपने केस की जानकारी हमें दे दीजिएगा।
4: जी जी जी बिल्कुल, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन
5: मास्टर जी,
4: जी
5: भरोसा रखिए, ठीक ही होगा।
4: अच्छा
2: अच्छा, चलते हैं। नमस्ते
4: नमस्ते नमस्ते।
3: ये चिट्ठियां आज ही मंत्रालय भिजवा दीजिएगा, ठीक है? जाइए आप। तो क्या नाम बताया था आपने?
2: जी मैं जमुनिया, फतेहपुर की सरपंच, और ये जयंत है हमारे सहयोगी।
3: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: हमारे फतेहपुर के विद्यालय में एक मास्टर जी हैं, एनके गुप्ता। उनकी पदोन्नति,
3: उनकी पदोन्नति से आपका क्या लेना देना? देखिए, ये हमारे विभाग की बात है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा।
2: विभाग के काम में दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है।
3: वही बेहतर होगा।
2: गुप्ता जी 20 साल से हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारे जिले में सबसे अच्छा रिजल्ट है हमारे विद्यालय का।
5: और अभी विभाग में जिन शिक्षकों की पदोन्नतियां हुई हैं, उनमें से सबसे सीनियर भी हैं वो।
3: मैं विभाग का प्रमुख हूँ, क्या आप सोचते हैं कि ये जानकारियां मुझे नहीं है?
2: हम सिर्फ इसके बावजूद उनकी पदोन्नति ना हो पाने के कारण जानना चाहते हैं।
3: मैं बताना जरूरी नहीं समझता, और फिर ये गोपनीयता होती है।
5: आश्चर्य है, सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: तो
2: उसी कानून के अंतर्गत हम ये आवेदन दे रहे हैं। हमें जिन शिक्षकों का पिछले माह प्रमोशन हुआ है, उनकी वरीयता क्रम में सूची, पिछले 3 सालों में जिले में श्रेष्ठ घोषित विद्यालयों और श्रेष्ठ घोषित शिक्षकों के नामों की सूची प्रदान की जाए।
3: देखिए गुप्ता जी, के प्रमोशन का मामला है, आप क्यों पिछड़ी में पढ़ते हैं?
5: गुप्ता जी हमारे गांव के निवासी हैं और एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार शिक्षक हैं। ये गांव की सरपंच हैं और मैं
2: एक अच्छे शिक्षक के साथ विभाग ने अन्याय किया है। गुप्ता जी को न्याय दिलाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, क्योंकि अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है।
3: ठीक है, आवेदन तो मैं आपका ले रहा हूं, एक निवेदन मेरा भी है।
2: क्या?
3: कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इस मामले की जांच के लिए। हाँ, गुप्ता जी को न्याय मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है।
2: हम आभारी रहेंगे आपके। अच्छा, नमस्कार।
5: नमस्ते
3: नमस्ते।

0: काजू पता पड़ा गाँव गाँव शहर में कहते चैत बाबू और सरपंच की भैया। अरे चाय की छोड़ पहले मालूम कर वो टीटीआई आरटीआई का क्या हुआ भैया।
1: को भैया ये सरपंच जी ने आज किस बात के लाने सभा बुलाई है?
2: भैया हमें कछु पता नहीं चल रहा है, मिठाई भी बट रही है।
0: मिठाई मिठाई हम तो भैया दो लड्डू खाएंगे।
3: कृपया शांत हो जाइए सब लोग। आप सोच रहे होंगे कि मिठाइयाँ किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है। मिठाई हमारे विद्यालय के मास्टर जी यानी गुप्ता जी द्वारा बंटवाई जा रही है। उनका प्रमोशन हो गया है, अब वे हेडमास्टर बन गए हैं। और उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात ये है कि वे हमारे गांव के विद्यालय के हेडमास्टर बन गए हैं। अपनी ओर से और पूरे गांव वालों की ओर से मैं गुप्ता जी को बधाई देती हूँ। अब जैन जी इस विषय में आपको आगे बताएंगे।
4: भाइयों और बहनों, पिछली सभा में हमने आपको सूचना का अधिकार कानून, उसका महत्व, उपयोगिता और उसके लाभ के बारे में बताया था। गुप्ता जी का प्रमोशन इसका उदाहरण है। पूरी तरह योग्य होने के बावजूद प्रमोशन ना देकर विभाग ने गुप्ता जी के साथ अन्याय किया था। हमने बस इतना किया कि उसी कानून के जरिए विभाग के ऐसे दस्तावेज मांगे जो अन्याय साबित कर देते। परिणाम सामने है, विभाग ने अपनी भूल सुधारते हुए मास्टर जी का प्रमोशन कर दिया। अच्छा भाइयों, मास्टर जी मुझे इशारा कर रहे हैं, लगता है वो कुछ कहना चाहते हैं। आइए आइए आइए मास्टर जी आइए।
5: भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको विशेष रूप से सरपंच जी और जयंत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

0: मुझे प्रसन्नता है कि मैं प्रमोशन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज़्यादा दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश में ग्रामीणों के स्वामित्व अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 17 सितंबर से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान 2026 शुरू होगा, जिसके तहत 50 लाख से अधिक ग्रामीणों को निशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 19 सितंबर को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजीनगर भोपाल में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में पिछले एक माह में 11 जिलों में नए आधार केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनमें बैतूल, सतना, अलीराजपुर, देवास, धार, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर और रतलाम शामिल हैं। अगले माह 10 और जिलों में आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन आज से शुरू हो गया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए 1100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। श्रृंखला का तीसरा मैच गुरुवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

स्वागत वंदन अभिनंदन प्यारी सखियों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी सोनल चौरे। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। याद है वो दिन सखियों, जब एक ही चैनल को देखने के लिए पूरा परिवार सिमट जाता था। आज है दूरदर्शन दिवस। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ था ये सफर एक छोटे से प्रयोग के रूप में, और देखते ही देखते ये बना देश की आवाज। रामायण, महाभारत, चित्रहार, कृषि दर्शन, ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं, हमारी यादें हैं। दूरदर्शन ने गांव-गांव तक खबर, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाया। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक इसने हर रंग दिखाया। आज उस सुनहरी यादों को सलाम करते हैं। दूरदर्शन दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सखियों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डे भी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। हर साल 15 सितंबर को ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है आपकी आवाज़, आपका हक, आपकी पसंद। ये दिन 2007 में यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था ताकि दुनिया का हर नागरिक समझे कि देश उसी से बनता है। तो आइए आज एक वादा करते हैं, हम सुनेंगे, समझेंगे और देश को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र हमसे है और हम लोकतंत्र से। और सखियों, कल से शुरू हो चुका है हमारा सबसे प्यारा त्यौहार गणेश उत्सव। 10 दिन तक बप्पा हमारे घर, हमारे दिल में रहते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और विघ्न को हरने वाले देवता माना जाता है, इसलिए हर सुबह काम से पहले उन्हीं की पूजा होती है। सभी जगह पंडालों की तो बात ही कुछ और होती है। फूलों से दरबार सजता है, ढोल नगाड़ों की थाप और मोदक की महक, पूरे शहर में बस एक ही नारा होता है। तो आइए हम सब मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया।

0: और सखियों, अब बात कर लेते हैं योजना की। सरकार द्वारा पीएमई ड्राइव योजना लाई गई है। ये योजना 2024 में शुरू एफएएमई योजना की जगह आई है और अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 11,900 करोड़ का बड़ा बजट रखा है। अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेते हैं तो 5,000 रुपये तक की सब्सिडी, थ्री व्हीलर ई बस, ई ट्रक और तो और पहली बार ई एम्बुलेंस पर भी मदद मिलेगी। और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, गाड़ी खरीदते ही आपको आधार से ई वाउचर बनेगा और शोरूम में ही छूट मिल जाएगी। सरकार का टारगेट है 45 लाख से ज़्यादा ई टू व्हीलर, 14,000 ई बसेस और देश भर में 88,000 चार्जिंग स्टेशन बनाना। तो अब सफ़र होगा और भी सस्ता, हमारी जो आबो हवा है वो साफ रहेगी सखियो, और देश बनेगा आत्मनिर्भर। तो आप इलेक्ट्रिक वाहन ज़रूर खरीदें और अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी शोरूम में संपर्क करें। और अब सखियो, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेरी उड़ान क्रम की ओर। कैटरिंग एवं फूड सप्लायर मोहिनी दुबे से सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
0: रसोई से हम महिलाओं का नाता हमेशा ही रहा है और अच्छा खाना बनाना हमें बेहद पसंद होता है। साथ ही साथ दूसरों को खिलाकर जो आनंद मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। और अगर हम अपनी इस पसंद को अपने व्यवसाय से जोड़ दें तो सोचिए कितना अच्छा हो। बस ऐसा ही कर दिखाया है हमारी सखी मोहिनी दुबे ने, जो फूड सप्लाइंग और कैटरिंग के व्यवसाय में कार्यरत हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस काम से किस तरह से जुड़ी। मोहिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हमें बताएं, आपने यह काम कैसे शुरू किया?
2: घर में खाना बनाना तो एक रूटीन का काम होता है, सबके लिए ही होता है। तो हम लोग सोच रहे थे बाहर जाके कुछ काम करें, महिलाओं को बाहर जाने में बड़ी समस्या होती है, जाना आना, घर भी डिस्टर्ब होना सब कुछ। तो उसके चलते फिर हमने सोचा कि क्यों ना घर से ही कुछ किया जाए। उसके भी बहुत ऑप्शन लिए कि और कुछ काम शुरू करें, सिलाई कढ़ाई का या बुटीक या कुछ भी, लेकिन सबसे मुझे सरल लगा कि क्यों ना खाना बना के ही भेजा जाए। और जिस एरिया में हम यहाँ रहते हैं उधर थोड़ा सा शहर से बाहर है, तो वहाँ बहुत रिक्वायरमेंट भी थी। तो उसके चलते हमने फूड सप्लाई का काम शुरू किया, थोड़ा प्रचार भी किया, लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिला, फिर काम हमारा रेगुलर हो गया। ये काम जब हम घर में कर सकते हैं अपनों के लिए, तो हम अपने व्यवसाय के रूप में भी इसको कर ही सकते हैं। और जब बाहर वाला कोई बोलेगा कि नहीं आपका खाना बहुत टेस्टी था, हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर ऊर्जा मिलती है इससे काम करने की।
0: तो किस तरह से आप इस काम को करती हैं, क्या क्या आपको इसमें करना पड़ता है?
2: ये काम हमने इसे शौकिया तौर पर थोड़ा सा शुरू किया था, देखते हैं हमसे होगा नहीं होगा, लेकिन धीरे हमने जब शुरू किया तब लगा कि नहीं अब हो जाएगा, मतलब हो पा रहा है ठीक से। पूरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा है घर में, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा इस साथ में। और धीरे धीरे हमने पहले फूड सप्लायर शुरू किया, फिर सोचा नहीं यार रिक्वायर्ड बढ़ रही है, वैसे आने लग गए ज्यादा कैटरिंग के ऑर्डर्स। फिर हमने एक टीम बनाई, फिर कैटरिंग का भी ऑर्डर लेना शुरू किया है। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाने की सोचा।
0: तो आपकी टीम में कौन कौन शामिल है?
2: हमारी टीम में अभी तो हम लोग घर से कर रहे थे, जितना रिक्वायर्ड होता उतना लेबर बाइयां आ जाती कर देती, लेकिन अब जैसे बाहर जाके बनाना है तो फिर हमने एक बड़ी रसोई बनाने वाले भैया और केटर्स का पूरा, जिसमें हमारी केटर्स में अटेंड करने वाले भी, हलवाई भी, प्लस जो साफ सफाई करने वाले हैं वो सब भी, और इन सबको मिला के हमने एक टीम बना ली है। अब कहीं से भी एक ऑर्डर आता है तो हम सब पूरी टीम बन के काम करते हैं।
0: किन तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप इस कार्य को कर रही होती हैं?
2: परेशानियां तो हर काम में बहुत आती है। जब आप नया व्यवसाय कोई शुरू करते हैं तो आप समझिए कि आपको पहले परेशानियों से ही दो चार होना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं लगता है आसान है, चलो घर में खाना बनाया, खिलाया, अच्छा लगा, हाँ भैया कुछ। लेकिन जब आप इसी को आप व्यवसाय के रूप में लेती हैं तो आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, कोई भी व्यवसाय बोलते ना मुश्किल है, सब आसान नहीं है, देखने में अच्छा लगता है कि अच्छा है। तो शुरुआती दौर में लेबर नहीं मिलना, जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो नहीं मिलते, वो हमको पूरा करना पड़ता है। और सामने वाले को टाइम से देना, फर्स्ट टाइम जब हमने पहला दिन किया की शुरुआत करी तो हमने कुछ ऑफर्स रखे थे सबको, ऑर्डर भी किनके आए जो हमारे परिचित लोग थे कि हाँ भैया ये लोग नया काम शुरू कर रहे हैं, तो अब हमने ऑफर भी रखा और खाना भी बनाना, ना कभी एक्सपीरियंस आइडिया, हमने डिलीवरी करते करते लंच टाइम में देना था, 3 बज गया देते देते, तो वो शुरुआती दौर में अगर उसी समय हम सोचते कि यार अब नहीं हो पाएगा, लेकिन सबका सपोर्ट भी रहा और जब रिप्लाई उन लोगों का आया तो बहुत अच्छा लगा, चलो अगले संडे भी करेंगे, ऐसे करते करते अभी ये यहाँ तक पहुँच गए।
0: तो जैसे कि अभी आपने पब्लिसिटी की बात की है, तो पब्लिसिटी के लिए आप खुद क्या करते
2: हैं? पब्लिसिटी के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, ऐसे 2-3 सोर्स हमने लिए हैं। पैम्पलेट्स तो हम शुरू शुरू में बंटवाते थे लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है।
0: अच्छा मोहिनी जी, एक सबसे जरूरी मैं बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने ये काम शुरू किया है, मतलब आपको कहाँ ऐसा लगता है कि आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है?
2: अभी मुझे लगता है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बिना अर्निंग के कोई काम व्यवसाय बढ़ता है ना, रूटीन में तो हो रही है, लेकिन हम इधर प्रेफर करेंगे कि अगर शादी में जो बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उनमें थोड़ी सी बड़ी स्टेज पे लेवल पे अपनी अर्निंग होगी। मतलब अभी तो गृह प्रवेश वगैरह किया है, अभी शादी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर इसमें ज्यादा अर्निंग होगी।
0: अगर हमारी जो सखियां हैं वो इस कार्य में जुड़ना चाहती हैं, वो इस कार्य को करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकती हैं?
2: किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आप में होना चाहिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति कि हम करें, कोई काम मुश्किल नहीं है। जो सिलाई करती है वो सिलाई करे, जो बाहर जॉब करती है वो करे, लेकिन घर से करने के लिए वो सोचना उनको पड़ेगा कि हम क्या कर सकती है। किसी के भरोसे काम नहीं करना और किसी के कहने से भी नहीं करना, कोई कहे कि नहीं तुम ये कर लो तो वो नहीं, वो सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। अगर हाँ खुद आप कर रही हो, अपना है कॉन्फिडेंस कि नहीं कोई नहीं है मेरे साथ तो भी मैं कर लूंगी, तभी उस काम को करें और बिल्कुल सफलता क्यों नहीं मिलेगी।
0: बहुत अच्छा लगा मोहिनी जी आपसे बात करके, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारी सखियों को। अब वो भी अब कुछ इसी से संबंधित अपना काम शुरू करेंगी और मुझे लगता है कि वो जरूर आगे बढ़ेंगी आप ही की तरफ। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल धन्यवाद।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
0: सखियों, अभी हमने सुना कैटरिंग एवं फूड सप्लायर मोहिनी दुबे जी को, और अब सखियों सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और सखियों अब आगे बढ़ते हैं और रूपलावण्य क्रम में हम आज बात करेंगे कि चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए सिर्फ क्रीम नहीं, अच्छी नींद और सही खान पान भी जरूरी है। क्योंकि आप यदि सही क्रीम भी लगा रहे हैं और तो भी आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमारी नींद या तो अच्छी नहीं हुई है या हमारा खान पान ठीक नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते हो तभी आपकी स्किन खुद को रिपेयर करती है, इसलिए उसे ब्यूटी स्लीप कहते हैं। दिन भर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और तेल मसाला खाएंगे तो चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भरपूर पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास, और हरी सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज और घर का सादा भोजन खाओ। विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू आपके चेहरे को अंदर से चमकाते हैं। तो याद रखिए सखियों, क्रीम सिर्फ 20% काम करती है और 80% चमक आती है अच्छी नींद और सही खान पान से। और सखियों अब बात कर लेते हैं फूड जोन की। तो आज फूड जोन में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा की रेसिपी। सखियों अभी बारिश का मौसम है और इस समय भुट्टा बहुत पसंद आता है सबको। तो सखियों स्ट्रीट स्टाइल मसाला भुट्टा की रेसिपी के लिए आप सामग्री नोट करें। आपको भुट्टे लेना है 2, नींबू 1, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और काला नमक 1/2 टीस्पून। स्पेशल स्ट्रीट मसाला के लिए आपको क्या करना है, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, नींबू का रस, इन सब को मिक्स करके एक गहरा पेस्ट बना लेना है। अब इसे बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। भुट्टे को छिलके सहित या बिना छिलके के गैस पर या अंगीठी पर चारों तरफ से काला होने तक भून लेना है। स्ट्रीट जैसा स्मोकी फ्लेवर इसी से आ जाएगा। गरम भुट्टे को हाथ ना जले इसलिए कपड़े से पकड़ लेना। नींबू को काट कर उस पर नमक मिर्च लगाओ और पूरे भुट्टे पर रगड़ो, या सीधे हाथ से वो स्पेशल मसाला पेस्ट पूरे भुट्टे पर अच्छे से लगाओ। तो तैयार है आपका स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा। इस पर आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा, तो सिखियो इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। फिलहाल हम सुन लेते हैं ये मधुर सा गीत।

0: सखियों, क्या आपको भी दिन भर थकान रहती है? आपके बाल झड़ रहे हैं या आंखों के सामने अंधेरा या जरा सी चोट पर थकावट? तो सखियों, ये आलसपन नहीं बल्कि ये विटामिन्स की कमी का कारण भी हो सकते हैं। तो सखियों, काम की कुछ बातें में हम बात करेंगे कि विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए क्या ध्यान रखें और क्या कुछ खास बातें हम अपना सकते हैं। तो विटामिन डी के लिए हमें रोज सुबह 20 मिनट की धूप लेना है बिना सनस्क्रीन के। ये हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। अंडा दूध भी मदद करेगा। फिलहाल तो बारिश का मौसम है तो आप धूप वगैरह तो नहीं ले पाएंगी, लेकिन इनके लिए आप अंडा या दूध ले सकती हैं। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए यदि आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, दही, पनीर और अंकुरित अनाज रोज खाइए। यदि आंखों की रोशनी कम हो रही है, धुंधलापन लग रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि विटामिन ए की कमी है। तो आप इसके लिए गाजर, पपीता, हरी सब्जियां अपनी थाली में रोज शामिल करें। वहीं विटामिन सी की कमी के कारण चेहरे की चमक जो है वो कम हो जाती है, तो अपने आहार
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा।

0: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रेखा सोलंकी द्वारा गाए मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रेखा सोलंकी द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां हम आपको सुनवाएंगे रत्ना चक्रवर्ती की आवाज में भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रत्ना चक्रवर्ती द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जोश से।

अनु मल्लिका संगीत समीर के लिखे बोल, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जोश से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में फिल्म यस बॉस से।

0: जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म यस बॉस से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया। समारोह का आयोजन पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में बिजली विभाग के अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
1: बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज की प्रगति के संवाहक, बिजली की आपूर्ति व निर्बाध आपूर्ति के लिए 24 घंटे ठंड गर्मी बरसात जो रोल अदा करते हैं। 1956 से लगाकर के 2002-03 तक बिजली 55 साल में केवल 5000 मेगावाट, और साध्वी उमा भारती, स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान हमारे निवृत्त माननीय मुख्यमंत्री, जब ये उनसे मेरे पास अपनी सरकार का गठन हुआ तब तक हमने 20000 मेगावाट बिजली बढ़ाई, 7000 मेगावाट तो 2.5 साल में बढ़ा दी।
0: केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान 12 से 19 सितंबर तक देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश के 110 समुद्र तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं से अभियान में भाग लेने की अपील की है। लोगों को समुद्र संरक्षण के लिए ऑनलाइन शपथ लेने और सागर प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान के दौरान समुद्र तटों की सफाई के साथ जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन का किसान पंजीयन आज से शुरू हो गया है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से निर्धारित समय में पंजीयन कराने की अपील की है। प्रदेश में इसके लिए 1100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और सहकारी समितियों में पंजीयन निःशुल्क होगा, जबकि एमपी ऑनलाइन, कॉमर्स सर्विस सेंटर और लोक सेवा केंद्रों पर अधिकतम ₹50 शुल्क लिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर उपज के भुगतान के लिए किसान का आधार लिंक बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। धार जिले के पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित इंडोरामा क्षेत्र की मित्तल कंपनी में आज सुबह करीब 11 बजे नाइट्रोजन गैस के रिसीवर टैंक का निचला हिस्सा फटने से तेज धमाका हुआ। हादसे में 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनाथ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य किया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। विस्फोट के कारणों की जांच प्रशासनिक अधिकारियों और

तकनीकी विशेषज्ञों की टीम कर रही है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। वहीं तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी और निजी स्कूलों में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला, ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आगरमालवा जिले की नगर परिषद सुसनेर एवं जनपद पंचायत नलखेड़ा के 2 वार्डो के उप निर्वाचन के लिए पर्यवेक्षक ने सुसनेर में उप निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। शिवपुरी में सेवा भारती संस्थान ने सुपोषण जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वपोषित भारत समृद्ध भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। और नर्मदापुरम कलेक्टर ने जिले के माखन नगर और सिमरी हरचंद के सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर भूमि संबंधी प्रकरणों और अन्य मांगों की जाँच के लिए जिला स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय।

0: है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
1: इंडिया टुडे
2: भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
1: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
4: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
5: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
6: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई।

0: गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखा राव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए

0: निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां आपके भेजे पत्रों को हम पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपके पसंद के नगमे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गीत के साथ, जो है प्यासा सावन फिल्म से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धामणी मनोरा महाराष्ट्र से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरी की तरफ से। इसके अलावा पत्र मिला है हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयनंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, संतोष आनंद के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यासा सावन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पत्थर की सनम से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फरमाइश है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से रेखा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी श्रीवास्तव की। घंटाघर चौक से लिखा है हमें खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचौलिया ने। पालदानाका इंदौर से लिखा है हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पत्थर के सनम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं येसुदास की आवाज़ में फिल्म स्वामी से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की तरफ से। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ज़िला बुरहानपुर मुहत से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजुबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और उनके पूरे परिवार की ओर से इस अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है। तो दीजिए आप सभी के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत येसुदास की आवाज़ में।

राजेश रोशन का संगीत अमित खन्ना के लिखे बोल। स्वामी फिल्म से गीत सुना आपने येसुदास की आवाज़ में। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का है और अगली फरमाइश हमें मिली है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत की, जो है फिल्म खिलौना से। और ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरेंगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। दतरंगी से हमें लिखा है भागवत वर्मा ने। एक और पत्र हमें मिला है अनिल कपचाले, सबीहा, शुभम, आरवी, अमृता, रूपाली और उनके पूरे परिवार की ओर से। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खिलौना से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगली फरमाइश जो हमें मिली है वो है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी की और इन्होंने लिखा है शाहू नगर यवतमाल से और ये फरमाइश कर रहे हैं एक गीत की जो है सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में फिल्म नूर महल से। और इसके अलावा इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति और उनके पूरे परिवार की ओर से भी। तो आप सभी के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: गीत सुना आपने फिल्म नूर महल से सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में। संगीत था जानी बाबू कव्वाल का और बोल लिखे थे सबा खानी ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके फरमाइश अभी यहीं संपन्न होता है। हमारा पता नोट करें ताकि अपने पत्र आप भेजते रहें हमें। कार्यक्रम आपके फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान 12 से 19 सितंबर तक देश भर में चलाया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत देश के 110 समुद्र तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन का किसान पंजीयन आज से शुरू हो गया है। किसान 10 अक्टूबर तक अपनी उपज बेच

0: बेचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। धार जिले के पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित इंडोरामा क्षेत्र की मित्तल कंपनी में आज सुबह करीब 11 बजे नाइट्रोजन गैस के रिसीवर टैंक का निचला हिस्सा फटने से तेज धमाका हुआ। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं पहले मैच में कल भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक प्रदेश में कहीं भी अति भारी या भारी बारिश का अनुमान नहीं है। पिछले 4 दिनों से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में बारिश का दौर बना हुआ था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 6 बजे। कार्यक्रम किसानवाणी सुन सकेंगे 7:30 पर। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रसारित होगा 8:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 पर सुने कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन राग गौड़ मल्हार। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है रेखा सोलंकी द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मालवी लोकगीत रेखा सोलंकी की आवाज़ में। कार्यक्रम है सुगम संगीत, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जहां हम आपको सुनवाएंगे रत्ना चक्रवर्ती द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रत्ना चक्रवर्ती द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से।

आनंदराज आनंद का संगी, देव कोहली और प्रवीण भारद्वाज के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म हद कर दिया आपने से, उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ में।

0: आनंद राज आनंद का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल विभा शर्मा और उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हद कर दी आपने से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मन से, आवाज़ है उदित नारायण की।
1: शायद

संजीव दर्शन का संगीत समीर के लिखे बोल, उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मन से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण और कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

ए रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल कविता सुब्रमण्यम और उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नायक से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में फिल्म दिल से।

0: ए आर रहमान का संगीत गुलजार के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल से। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा है कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये भागीदारी संवाद, समानता और संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों पर मजबूती से कायम है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने नागरिकों से लोकतंत्र की भावना का उत्सव मनाने का आह्वान किया। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली से इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेबपोर्टल लॉन्च करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान 12 से 19 सितंबर तक देश भर में चलाया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत देश के 110 समुद्र तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन का किसान पंजीयन आज से शुरू हो गया है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बिंदु त्रिपाठी द्वारा काव्य पाठ।

नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत है मेरी पहली रचना, जिसका शीर्षक है तुम। ये महकती हवा ये बहकती फिजा, ये महकती हवा ये बहकती फिजा, ये लरजती बिजुरिया गमकती सी कलियाँ, कानों में आके चुपके से कह गईं तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। ये महकती हवा ये बहकती फिजा, ये लरजती बिजुरिया गमकती सी कलियाँ, कानों में आके चुपके से कह गईं तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। ये सुरमई शाम ये धुंधल का सा आसमां, ये सुरमई शाम ये धुंधल का सा आसमां, ये तारों का जमघट और गांव का पनघट, ये तारों का जमघट और गांव का पनघट, सखियों की टोली हंसी और ठिठोली, चुपके से कानों में आकर बता गई, चुपके से कानों में आकर बता गई तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। ये पैरों की पायल और कानों के झुमके, ये पैरों की पायल और कानों के झुमके, ये आँखों का काजल और अधरों की लाली, ये जुल्फें घनेरी ये दिल की धड़कन, चुपके से कानों में आकर कह गईं तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। ये नदिया की धारा और उठती हिलोरें, ये नदिया की धारा और उठते हिलोरें, ये पंछी का कलरव ये कोकिल का गान, ये गरजते गगन ये बरसते नयन, ये गरजते गगन ये बरसते नयन, ये महकती हवाएं चुपके से बता गई तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। ये पानी की धारा नदिया का किनारा, ये पानी की धारा नदिया का किनारा, ये शीतल बयारें ये दिलकश नजारें, ये शीतल बयारें ये दिलकश नजारें, ये बरखा की बूंदें बरसती फुहारें, कानों में आकर चुपके से कह गईं तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो, तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। श्रोताओं, आपके लिए मेरी दूसरी रचना प्रस्तुत है, मुट्ठी भर धूप। अरसे बाद आज फिर खिली है मेरे आंगन में धूप, अरसे बाद आज फिर खिली है मेरे आंगन में धूप, आँखों से अविरल बहते आंसुओं ने, आँखों से अविरल बहते आंसुओं ने नम कर रखा था बेरहमी से तन को और मन को भी, आँखों से अविरल बहते आंसुओं ने नम कर रखा था बेरहमी से तन को और मन को भी, आज निकल ही आई, आज निकल ही आई उजली सी धूप, शायद ये सुखा सके, शायद ये सुखा सके आंसुओं को, सोख सके नमी को, तन की मन की उदासियों को, और हाँ शायद मजबूरियों को भी। कुछ अंधेरा सा घिर आया था, कुछ अंधेरा सा घिर आया था मन के आंगन में, कुछ अंधेरा सा घिर आया था मन के आंगन में, आज फिर खिली है, आज फिर खिली है उजली सी धूप, शायद दूर हो जाए अंधियारा, शायद दूर हो जाए अंधियारा मन के कोने का, और उजास फैल जाए, उजास फैल जाए मन आंगन के हर एक कोने में। डर है, डर है कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा जब छोड़ जाएगी यह धूप कुछ देर का उजियारा कर, क्या होगा जब दूर कर जाएगी अंधियारा उजियारा कर, फिर छा जाएगा वही अंधकार तन मन और जीवन में भी, इसीलिए आंगन में खिली धूप से, इसीलिए आंगन में खिली धूप से

सहेज कर रख ली है मैंने मुट्ठी भर धूप, सहेज कर रख ली है मैंने मुट्ठी भर धूप। प्रिय श्रोताओं, अब मेरी अगली रचना है, नवयुवा पीढ़ी को सुनिएगा। उठो जवान देश के संभाल लो कमान, उठो जवान देश के संभाल लो कमान, जगे प्रसुप्त चेतना सजे नया विहान, जगे प्रसुप्त चेतना सजे नया विहान, थके न पाँव पंथ में डिगे न स्वाभिमान, थके न पाँव पंथ में डिगे न स्वाभिमान, वसुंधरा पुकारते सुनो प्रयाण गान, वसुंधरा पुकारते सुनो प्रयाण गान, अभिन कर्म चेतना जगी खड़ा विनाश, अभिन कर्म चेतना जगी खड़ा विनाश, स्वतंत्रता स्वदेश की न हो कभी अनाथ, स्वतंत्रता स्वदेश की न हो कभी अनाथ, लजान मात्र दुग्ध है सपूत आज जाग, लजान मात्र दुग्ध है सपूत आज जाग, डसे न देश को कभी कराल क्रूर नाग, डसे न देश को कभी कराल क्रूर नाग, पुकार मात्र भूमि की सुनो सपूत आज, पुकार मात्र भूमि की सुनो सपूत आज, सनाथ ही रहे धरा लुटे कभी न लाज, सनाथ ही रहे धरा लुटे कभी न लाज, झुके न भाल देश का बुझे नहीं मशाल, झुके न भाल देश का बुझे नहीं मशाल, उठो जवान देश के संभाल लो कमान, उठो जवान देश के संभाल लो कमान। मेरी अगली रचना सादर प्रस्तुत है आपके लिए। सागर हो मेरे जीवन के, सागर हो मेरे जीवन के,

प्रिय, चाहे जितना दूर रहूं मैं, चाहे जितना दूर रहूं मैं, मुझे न जाना भूल प्रिय। बाहों का तेरे हार चाहिए, बाहों का तेरे हार चाहिए, नहीं चाहिए फूल प्रिय।

बोल प्रिय जीवन नैया के तुम्ही खिवैया, जीवन नैया के तुम्ही खिवैया, तुम हो जीवन का मूल प्रिय। चाहे जितना शिखर चढ़ूँ मैं, चाहे जितना शिखर चढ़ूँ मैं, रहूँगी फिर भी धूल प्रिय। भूल चूक और शिकवे गिले को, भूल चूक और शिकवे गिले को, देना मत कोई तूल प्रिय। जाने अनजाने दुख पहुँचे तो, जाने अनजाने दुख पहुँचे तो, जाना तुम उसको भूल प्रिय। जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, बिन तेरे मैं निर्मूल प्रिय। अलग अलग हो राय कभी तो, अलग अलग हो राय कभी तो, जाना मत प्रतिकूल प्रिय। विपरीत परिस्थिति यदि आ जाए, विपरीत परिस्थिति यदि आ जाए, कर लेना तुम अनुकूल प्रिय। भूल कभी कोई हो जाए,

0: प्रिय मित्रों, आपके लिए प्रस्तुत है एक दूसरी रचना। शीर्षक है माँ मंदिर की मूरत सी। तन मन की तपती पीड़ा में, तन मन की तपती पीड़ा में पल में राहत दे जाती है। तन मन की तपती पीड़ा में पल में राहत दे जाती है माँ शीतल मंद बयार सी। यूं तो हर दम हंसती है, यूं तो हर दम हंसती है, भीतर ही भीतर रोती है। यूं तो हर दम हंसती है, भीतर ही भीतर रोती है, नहीं किसी से कुछ कहती है, नहीं किसी से कुछ कहती है, भीतर ही भीतर जलती है माँ दीपक की बाती सी। जब होती है घर में माँ, जब होती है घर में माँ, कोना कोना उसकी खुशबू से सुरभित होता रहता है। जब होती है घर में माँ, कोना कोना उसकी खुशबू से सुरभित होता रहता है माँ फूलों की क्यारी सी, माँ फूलों की क्यारी सी। ममता का आंचल फैलाकर, ममता का आंचल फैलाकर घर में खुशियों के रंग बिखेरती, ममता का आंचल फैलाकर घर में खुशियों के रंग बिखेरती माँ आंगन की रंगोली सी, माँ आंगन की रंगोली सी। छम छम करती चलती घर में, छम छम करती चलती घर में संगीत सुधा बरसाती है माँ पायल के घुंघरू सी, माँ पायल के घुंघरू सी। माँ के होने से पावन होता, माँ के होने से पावन होता घर का हर एक कोना, माँ के होने से पावन होता घर का हर एक कोना माँ तुलसी के बिरवासी, माँ तुलसी के बिरवासी। पूजा घर में सभी देव संग, पूजा घर में सभी देव संग लगता है जैसे माँ बसती है हल्दी कुमकुम रोली सी, हल्दी कुमकुम रोली सी। मंद मंद मुस्काती हरदम, मंद मंद मुस्काती हरदम मन ही मन करती है क्रंदन, मंद मंद मुस्काती हरदम मन ही मन करती है क्रंदन। जाने क्या रखती है मन में, जाने क्या रखती है मन में माँ अनबूझ पहेली सी, माँ अनबूझ पहेली सी। सुंदर मुख पर तेज सरीखा, सुंदर मुख पर तेज सरीखा झूठा क्रोध दिखाती है, सुंदर मुख पर तेज सरीखा झूठा क्रोध दिखाती है माँ की डांट डपट भी लगती कोयल की मीठी बोली सी, माँ की डांट डपट भी लगती कोयल की मीठी बोली सी। माँ का मोहक रूप देखकर, माँ का मोहक रूप देखकर मन हर्षित हो जाता है, माँ का मोहक रूप देखकर मन हर्षित हो जाता है मन मोहक छवि लगती जैसे माँ मंदिर की मूरत सी, माँ मंदिर की मूरत सी।
1: कार्यक्रम शब्द सागर के अंतर्गत अभी आपने सुना काव्य पाठ बिंदु त्रिपाठी के द्वारा। लीजिए प्रस्तुत है काव्य पाठ नीलिम्फ त्रिपाठी द्वारा।
2: नमस्कार, आज काव्य पाठ के इस चरण में आरोहण रचना से प्रारंभ करते हैं। भारतीय जीवन में आनंद ही अप्रतिम है और प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। हमारा मन सदैव आरोहण को उन्मुख रहता है, तो कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं आरोहण शीर्षक से। भक्ति के मार्ग पर भय नहीं रहता, शांत मन में संशय नहीं रहता, किसी को नीचा दिखाने की होड़ न हो तो सरल होने पर कभी द्वेष नहीं रहता। समय का चक्र सदा चलता रहेगा, हृदय हमारा तुम्हारा धड़कता रहेगा, स्नेह की आहुति अगर मिलती रही तो जीवन यज्ञ बनकर कल्याण करता रहेगा। जीवन है कोई अनसुलझी पहेली नहीं, संसार में इच्छा पूर्ति की कोई

0: थाह नहीं। समय के चक्र में सुख दुख की सुइयां हैं, अपनों से अपनों को कोई चाह नहीं। काल के तैरते समय में सांस चल रही है, सहजता के पंखों पर आत्मीयता उड़ रही है, नेह का बंधन दिखाई तो नहीं देता, लेकिन प्रेम के सहारे ही ये दुनिया चल रही है। हमारा जीवन भारतीय संस्कृति परंपराओं के उत्स से संबंधित है। प्रत्येक मन मानस जब तक भारत माता की इन स्वर लहरियों में अपना स्वर नहीं मिलाता, तब तक पूर्णता प्रतिभासित नहीं होती। तो आइए एक रचना सुनते हैं, जय भारत जय भारती। ऋषियों की तपस्थली सुहावनी, वेदों की पावन वाणी, हिमगिरी का मुकुट सुशोभित, नदियां अमृत कल्याणी, केसर की सुगंध से महके धरती यह वरदानी, युगों युगों से विश्व गुरु यह भारत भूमि सुहानी। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। रामायण गीता का उपदेश जहां गूंजे अनंत, सत्य अहिंसा और प्रेम का पथ दर्शाता अनंत, बुद्ध महावीर कबीर की यह तपो भूमि निष्काम, कण कण में है रूप ईश का, घट घट में है राम। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। महाराणा शिव छत्रपति की आन यहाँ लहराई, झांसी वाली रानी ने भी अद्भुत ज्योति जगाई, भगत सुभाष और आजाद ने हंसकर जीवन वारा, शीश कटा पर झुका नहीं यह स्वाभिमान हमारा। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। भिन्न भिन्न भाषाएं वेश पर एक डोर में बांधे, अनेकता में एकता का पावन जीवन साधे, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी गाती एक तराना, इस माटी की रक्षा में हर मन को मंदिर है हो जाना। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। ज्ञान विज्ञान और कला में नित नए कीर्तिमान रचकर, सागर से अंबर तक भारत का जय जयकार सुहाए, नित वैभव का संस्पर्श करे, नव प्रभाति की रश्मि लिए, विश्व फलक पर सदा तिरंगा फहराए, यह मन को बहुत लुभाए। जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। और आइए अब हम विज्ञान के व्यंग को आज के समय से समझें। डिजिटल दुनिया में सब हो गए अति महान, जेब में रखे घूम रहे हैं सब छद्म ज्ञान। सच्चाई दुबकी बैठी है कमरे के अंदर कोने में, झूठ मनाता फिरता देखो सड़कों पर उत्सव गान। रील्स और शॉर्ट्स के पीछे भाग रहा है हर इंसान, 15 सेकंड की दुनिया में सिमट गया सम्मान। दुख दर्द भी अब तो केवल कंटेंट बन गए, कैमरा ऑन किए बिकता है अब स्वाभिमान। डिग्री की तो बाढ़ आ गई, समझ हुई है बेहद कम, इंटरनेट के गुरु सिखाते कैसे जीते हर दम। 4 किताबें पढ़ी नहीं पर देंगे राय हर मुद्दे पर, अहंकार की चादर ओढ़े मन में भर रखा है भ्रम। रिश्ते नाते सिमट गए हैं, व्हाट्सएप के उस ग्रुप में अपने भी अब दिखते हैं अनजाने से एक रूप में। साथ बैठकर बातें करने का न रहा किसी को समय, छाई है वीरानी सबकी इस कृत्रिम सी दुनिया में। डिस्प्ले पर तो प्रेम छलकता, दिल में भरी है गहरी खाई, दिखावे की इस दुनिया में हर दम नई चीज बनाई। लाइक और कमेंट्स से तय होती है आत्मीयता, सचमुच के जज्बातों की तो अब हो चुकी विदाई। कटाक्ष नहीं यह आईना है, देखो इसमें अपना रूप, कहाँ खो गई वह अमराई, कहाँ गई वह पावन धूप। जीवन के इन विविध उतार चढ़ावों में हम अपने जीवन को सहज संयमित और सुरभित करें, हमारा जीवन आनंद से भरा रहे और हम पारस्परिक प्रेम, आह्लाद और स्निग्धता से जीवन जिएं। अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार।
1: कार्यक्रम शब्द सागर में अभी आपने सुना काव्य पाठ नीलम त्रिपाठी द्वारा, और इसी के साथ सब शब्द सागर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

अब तक की कहानी यूं है। गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जमुनिया ने गीता के इस उपदेश को जीवन में उतार लिया है। निष्ठा, सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करते चलो और लक्ष्य से भटके बिना आगे बढ़ते जाओ तो लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी ही, फल भी मीठा मिलेगा। इस बात को समझने के लिए जमुनिया के जीवन से बेहतर उदाहरण क्या होगा? पति की असमय मृत्यु, निखट्टू देवर की दगाबाजी, आर्थिक अभावों का पहाड़ सा बोझ सिर पर, यही था जमुनिया का शुरुआती जीवन। पर वो लड़ी हालातों से पूरी हिम्मत के साथ। निविड़ अंधकार भरे वर्तमान से जूझकर दोनों बच्चों को उज्जवल भविष्य दिया। बेटा तेजस कलेक्टर और बेटी रूपस डॉक्टर है। पारिवारिक स्तर पर जमुनिया की उपलब्धियां जितनी शानदार हैं, उतनी ही शानदार हैं उसकी उपलब्धियां सामाजिक स्तर पर। आज जमुनिया उसके गांव फतेहपुर की कामयाब सरपंच है, जिसने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए गांव वालों के सहयोग से फतेहपुर गांव का कायाकल्प कर दिया है।

0: इस बरस तो बड़ा कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा चंदू की अम्मा।
1: जलावन की आधी लकड़ी हाथ तापने में फूट गई तुमने।
0: अरे अब तापन के लाने तो लकड़ी और रोपले ही जलाएंगे ना। अरे कोई गैस पर हाथ तापता है का?
1: अरे सुमित्रा जरा चाय तो बना दे।
2: ओ अम्मा अभी लाती हूँ।
0: एकदम मेरे मन की कह दी तुमने तो। अरे मासाब अरे किचे को निकल पर इतनी ठंड में। अरे बेटो चाय पी जाओ मासा।
3: अरे सुनाओ कक्का। अरे क्या हाल है? अरे घर में सब ठीक है ना?
0: अब हमारा हाल तो एकदम फर्स्ट क्लास मासा। अच्छा पर जे तुम्हारा मुंह काहे लाने लटका करो मासा पे है। अरे लो की तो रैया की ना का?
3: अरे अरे भैया कोई खास बात नहीं है।
0: ए मासा झूठ ना बोलो मासा। कच्चू बात तो है।
1: लो मास्टर चाय पियो।
0: मास्टर कच्चू बताने जैसो हो तो बोलो। अरे बोलकर मन हल्का हो जाते है।
3: अरे भैया 20 साल हुए हमें इस गांव में आए।
0: हाँ जी तो है।
3: शहर में पैदा हुए पले बढ़े। सरकार ने गांव में नौकरी दे दी और हम गांव के ही होकर के रह गए।
0: हाँ जे तो ठीक कही वहां साहब आपने। अरे हमको तो लग रहा था कि शहर के और मास्टरों जैसे जे भी भग जाएंगे तबादले की जुगाड़ करके। अरे पर तुम ना भागे मास्टर।
3: सच्ची कह रहे भैया हमने कोई जुगाड़ ना की बस ईमानदारी से पढ़ाते रहे।
0: सो तो सारा गांव जानत है माज साहब। अरे इज्जत भी करता है आपकी। हाँ
3: अरे भैया अभी प्रमोशन हुए पर हमारा नहीं हुआ।
0: का?
3: हमारा रिकॉर्ड ठीक सीनियरिटी में भी हम एक नंबर पाओ
0: एक नंबर
3: पर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ।
0: अरे माज साहब ये तो जंगल राज जैसी बात भाई है। अरे पूछो अपने

0: आप सर्वोच्च।
1: अरे पूछो तब भैया, जब वो मिले
0: का
1: चिट्ठियों का जवाब तक तो देते नहीं।
0: अरे मां साहब, अरे फिक्र ना करो मां साहब, अरे ऊपर वाले के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है।
1: हाँ भैया, उसी ऊपर वाले के घर यानी मंदिर जा रहे भैया, जा पूछने के लिए कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ।
0: अरे
1: चलता हूँ भैया, राम राम।
0: राम राम मां साहब।

0: काय जे पंचर ठीक करने वाला किधर निकल लिया दुकान बंद करके?
1: अरे भैया ठंड है।
2: अरे सोया होगा रजाई ओढ़ के, और का।
1: भैया आरटीआई कार्यकर्ता का कमाल
3: का भैया, जे आरटीआई कोनो पॉलिटिकल पार्टी है का?
0: अब पता नहीं, जयंत बाबू आते होंगे पंचायत दफ्तर, उनसे पूछ लेना।
1: आ जे ठीक है भैया। अरे भाई आई गए।
4: राम राम भैया।
2: राम राम
0: राम राम, राम, राम भैया।
5: आप लोगों को पंचायत भवन में अखबार पढ़ने के लिए जुटते देखता हूं ना, तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान की सफलता देख बहुत खुशी होती है।
2: जयंत भैया, आपकी और सरपंच जी की मेहनत का फल है, और का।
5: जितने ज्यादा लोग पढ़ना सीखेंगे उतनी ही ज्यादा देश की शक्ल निखरेगी,
2: और का,
5: और प्रजातंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत होंगी।
2: जयंत भैया तनिक एक बात बताइए।
5: पूछो।
2: जे आरटीआई कौन सी पार्टी है? अरे हमने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना। अरे जे अखबार में लिखा है उसके कार्यकर्ता का कमाल, जे देखो।
5: आरटीआई कोई पार्टी नहीं है। हाँ, एक कानून है।
2: कानून?
5: राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार।
0: जे कौन सा कानून है भैया?
5: आजादी के बाद 58 साल तक जो ना हो पाया, इस सरकार ने ये कानून बनाकर वो कर दिखाया।
0: अरे वाह, इतने कमाल का कानून है ये।
5: हाँ, जनता सरकार चुनती है।
1: हाँ बिल्कुल।
5: सरकार क्या करती है या नहीं कर रही है, ये जानने का जनता को अधिकार है या नहीं।
1: माँ भैया बरोबर बरोबर, ये तो है।
5: सूचना का अधिकार कानून यही अधिकार जनता को देता है।
3: अरे भैया इतना बढ़िया कानून, और माँ साहब को क्यों नहीं पता अब तक?
5: ऐसा हो नहीं सकता। अक्सर होता यह है कि कानून का नाम सुना होता है पर इसके इस्तेमाल का तरीका पता नहीं होता।
3: ये तो है। जयंत भैया, माँ साहब को भेजूंगा मैं आपके पास। ठीक है
5: ठीक है,
3: अब मैं चलता हूँ। अच्छा राम राम।
2: राम राम जयंत भैया।
4: राम राम भैया। राम राम।
6: जयंत जी।
5: हाँ।
6: नरेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव में किए जाने वाले कामों की रिपोर्ट देख ली है ना आपने?
5: हाँ, रिपोर्ट भी देख ली है और मजदूरी के भुगतान का हिसाब भी एकदम ठीक है।
6: अच्छा, अरे आइए आइए मास्टर जी, आइए बैठिए।
2: अच्छा,
6: रामदीन भैया, तीन ग्लास पानी लाना।
2: जी।
6: हाँ कहिए, कैसे आना हुआ?
5: अरे सुबह जब मैं दफ्तर आया तो अखबारों वाले स्टैंड के पास सूचना का अधिकार कानून की बात कर रहा था, तो
7: कक्का जी ने कहा कि मां साहब आप जयंत जी से मिल लो, सो भैया चला आया।
5: हाँ।
6: सूचना का अधिकार कानून, आप मिल ले? कुछ समझ नहीं आ रहा कि

0: मसला क्या है?
1: अरे छोड़िए छोड़िए, अब आप क्यों परेशान होती हैं?
0: ऐसा ना कहें, आप हमारे साथ ही हैं, आपकी परेशानी हमारी भी तो है।
2: हाँ जमुनिया जी ठीक कह रही हैं। मास्टर साहब आइए, यहां बैठिए आप, और अब विस्तार से बताइए मामला क्या है।
0: हमसे जो बन पड़ेगा जरूर करेंगे।
1: ऐसा है भाई के विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन हुए, हम सीनियर मोस्ट हैं, हमारा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, पर प्रमोशन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है।
2: अरे ये तो सरासर अन्याय है।
0: विभाग के बड़े अफसरों से मिले?
1: मिले हम,

0: भैया ये जरा हमारी पर्ची साहब तक पहुंचा दो ना, बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं।
1: अरे कोई काम नहीं क्या हमारे पास? चले आते हैं, वो उठाए तीसरे चौथे दिन। लाओ पर्ची।
0: ये लो भैया, बड़ी मेहरबानी भैया।
2: जी जी सर। जी नमस्ते सर।
0: साहब नमस्ते साहब जी। मैं सर एन के गुप्ता हूँ सर, फतेहपुर विद्यालय में UDT।
2: ओह तो वो तुम हो। प्रमोशन ना होने की चिट्ठियां और शिकायतें भेजना बंद करो।
0: सर हमारा रिकॉर्ड, हम सीनियर मोस्ट हैं सर।
2: पता है हमें, काम धाम करते नहीं हो और प्रमोशन चाहिए।
0: सर हमारा रिजल्ट जिले में सबसे अच्छा है सर।
2: मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? देखिए आगे से चिट्ठी लिखी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ।
3: ये तो सरासर हिटलर शाही है। वो कहावत है ना, जबरा मारे रोने ना दे।
4: शांत हो जाइए आप मास्टर जी।
0: जी
4: अब आप निश्चिंत हो जाएं। अब हम आपको सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग कर न्याय दिलाएंगे।
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ आप मत कीजिए, वे हमारे उच्च अधिकारी हैं, गुस्सा होकर मेरा कुछ नुकसान भी कर सकते हैं।
3: देखिए मास्टर जी, सरकार ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कानून के रूप में आपको हथियार दिया है। हथियार के इस्तेमाल से डरेंगे तो न्याय कैसे पाएंगे?
4: चलिए एक काम करते हैं, हमने पहले ही कहा कि ये केवल आपकी नहीं हमारी साझा लड़ाई है। अब इस हथियार का इस्तेमाल हम करेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे।
3: हाँ जमुनिया जी, एक मास्टर जी ही क्यों, हमारे फतेहपुर गांव का हर निवासी, मुझे लगता है इस कानून के बारे में जाने और इसके साथ अगर अन्याय हो तो खुद लड़ सके न्याय की लड़ाई।
4: एकदम ठीक, मैं आज ही शाम को गांव वालों की सभा बुलाती हूँ। चलिए सब लोग बैठ जाइए शांति से। आज की सभा हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कानून की जानकारी सभी गांव वालों को देने के लिए बुलाई है।
2: जी तो बहुत ही अच्छी बात है।
4: मैं जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपको इस कानून के विषय में बतलाएं।
3: भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सूचना का अधिकार कानून के बारे में बताने वाला हूं। प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कानून है ये, जो जनता को उसके द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा किए गए कामों और ना किए गए कामों दोनों को जानने का अधिकार देता है।
2: ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया।
5: अरे भैया ये तो बताओ कि वो जानकारी हमें राष्ट्रपति देंगे, प्रधानमंत्री देंगे कि मुख्यमंत्री देंगे?
2: अरे अरे अरे भौजी तना गम तो खाओ भाई।

0: बता रहे वो।
1: अरे सुनो, हमारी सरकार कई विभागों, उनके कई दफ्तरों और उन दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से काम करती है।
2: भैया पर जयंत भैया, जे कैसा पता चले कि कौन सा अधिकारी जानकारी देगा?
1: एक दफ्तर में कई अधिकारी होते हैं, उनमें से किसी एक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। हाँ, जिसकी सूचना सूचना पटल पर दी जाती है। उसका काम है आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आपको प्रदान करना।
3: अरे तो उसके लिए तो अर्जी देना पड़ती होगी ना। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना तो पंचायत ने प्रौढ़ शिक्षा क्लास में सिखा दिया है, पर अर्जी लिखना तो
1: जरूरत पड़ने पर लोक सूचना अधिकारी आपको अर्जी लिखवाने में भी मदद करता है।
4: अरे ये बढ़िया बात है भैया, वरना ये अनपढ़ आदमी क्या करेगा बेचारा है।
1: देखो, इस कानून ने सूचना का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़।
0: अरे वाह, इस कानून ने सूचना का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़।
5: ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, बहुत ही।
2: अर्जी लिखते कैसे हैं भैया?
5: और बता दे भैया।
1: अरे कोई लंबी नहीं, बल्कि छोटी सी अर्जी हो जिसमें गिने चुने शब्दों में आप चाहें तो सवालों की शक्ल में जानकारी पूछ लें। नाम मात्र की फीस भरनी होती है, जो आप चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर और तो और नगद भी भर सकते हैं।
5: अच्छी बात है भैया, नगद देना तो है।
6: गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले नागरिकों को ये नाम मात्र की फीस भी माफ होती है।
1: हाँ, ये अच्छी सूचना दी तुमने जमुनिया। अर्जी की तारीख से 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी आपको आपकी चाही जानकारी देगा।
5: अच्छा अच्छा।
7: अरे भैया, अगर लोक सूचना अधिकारी वो जानकारी ना दे तो?
6: उस पर 2,500 रुपए रोज की दर से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
7: हाय भैया।
1: हाँ, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, ज्ञापन, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, लॉग बुक आदि की सत्यापित प्रतियां मांग सकते हैं, और तो और निर्माण कार्यों की सामग्री के नमूने भी मांग सकते हैं।
6: निर्माण कार्य, निर्माण सामग्री या दस्तावेजों को खुद अपनी आंखों से निरीक्षण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2: पर जमुनिया दीदी, सूचना अधिकारी आधी अधूरी या गलत जानकारी भी तो दे सकता है।
5: ये तो सांची कही दद्दू तुमने।
1: अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा होने पर आप अपीली अधिकारी के पास अपील भी कर सकते हैं।
6: और तो और, अपीलीय अधिकारी की कार्रवाई से असंतोष होने पर आप उसके ऊपर के अधिकारी यानी सूचना आयुक्त को शिकायत कर सकते हैं।
7: का हमारे राज्य में भी है सूचना आयुक्त?
1: हाँ, हर राज्य में है, और इनसे ऊपर होता है केंद्रीय सूचना आयोग।
3: अरे वाह भैया, जे तो बड़ो बढ़िया हथियार दे दियो सरकार ने हमें।
2: लगाते रहो अर्जी पे अर्जी,
8: अर्जी पे अर्जी, अर्जी पे अर्जी,
7: मांगो जानकारी जितनी मर्जी।
1: अरे ये तो हथियार का गलत इस्तेमाल हो जाएगा।
0: अच्छे भी ठीक कही आपने जयंत भैया।
6: हमें सरकार से जानकारी पूछने से पहले अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमें उस जानकारी की वाकई जरूरत है क्या? क्या उस जानकारी से हमें या समाज को कोई लाभ होने वाला है?
1: समस्या से जुड़ी ऐसी जानकारी पूछें जो समस्या हल करने में मदद कर सके।
6: हाँ, पता ही नहीं चला, रात के 9 कब बज गए। चलिए आज की सभा बर्खास्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।

0: नमस्ते जैन जी,
1: नमस्ते नमस्ते मास्टर जी,
2: नमस्ते मास्टर जी,
0: बच्चों नमस्ते करो,
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
2: कैसी चल रही है बच्चों की पढ़ाई?
4: जी बस अच्छी चल रही है
5: मास्टर जी।
4: हाँ जी,
5: आने वाले सोमवार को हम जिला मुख्यालय जा रहे हैं।
4: अच्छा अच्छा,
2: आप अपने केस की जानकारी हमें दे दीजिएगा।
4: जी जी जी बिल्कुल, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन
5: मास्टर जी
4: जी
5: भरोसा रखिए, ठीक ही होगा।
4: अच्छा
2: अच्छा, चलते हैं। नमस्ते
4: नमस्ते नमस्ते।
6: ये चिट्ठियां आज ही मंत्रालय भिजवा दीजिएगा, ठीक है? जाइए आप। तो क्या नाम बताया था आपने?
2: जी मैं जमुनिया, फतेहपुर की सरपंच, और ये जयंत है हमारे सहयोगी।
6: कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: हमारे फतेहपुर के विद्यालय में एक मास्टर जी हैं, एनके गुप्ता। उनकी पदोन्नति
6: से आपका क्या लेना देना? देखिए ये हमारे विभाग की बात है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा।
2: विभाग के काम में दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है।
6: वही बेहतर होगा।
2: गुप्ता जी 20 साल से हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारे जिले में सबसे अच्छा रिजल्ट है हमारे विद्यालय का।
5: और अभी विभाग में जिन शिक्षकों की पदोन्नतियां हुई हैं, उनमें से सबसे सीनियर भी हैं वो।
6: मैं विभाग का प्रमुख हूँ, क्या आप सोचते हैं कि ये जानकारियां मुझे नहीं है?
2: हम सिर्फ इसके बावजूद उनकी पदोन्नति ना हो पाने के कारण जानना चाहते हैं।
6: मैं बताना जरूरी नहीं समझता, और फिर ये गोपनीयता होती है।
5: आश्चर्य है, सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
6: तो
2: उसी कानून के अंतर्गत हम ये आवेदन दे रहे हैं। हमें जिन शिक्षकों का पिछले माह प्रमोशन हुआ है, उनकी वरीयता क्रम में सूची, पिछले 3 सालों में जिले में श्रेष्ठ घोषित विद्यालयों और श्रेष्ठ घोषित शिक्षकों के नामों की सूची प्रदान की जाए।
6: देखिए गुप्ता जी के प्रमोशन का मामला है, आप क्यों पिछड़े में पड़ते हैं?
5: गुप्ता जी हमारे गांव के निवासी हैं और एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार शिक्षक हैं। ये गांव की सरपंच हैं और मैं
2: एक अच्छे शिक्षक के साथ विभाग ने अन्याय किया है। गुप्ता जी को न्याय दिलाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, क्योंकि अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है।
6: ठीक है, आवेदन तो मैं आपका ले रहा हूं, एक निवेदन मेरा भी है।
2: क्या?
6: कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इस मामले की जांच के लिए। हाँ, गुप्ता जी को न्याय मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है।
2: हम आभारी रहेंगे आपके। अच्छा, नमस्कार।
5: नमस्ते
6: नमस्ते।

0: या कछु पता पड़ा गांव का शहर में कहते जयंत बाबू और सरपंच जी भैया। अरे चाय की छोड़ पहले मालूम कर वो टीटीआई आरटीआई का क्या हुआ भैया। हमारे को कछु समझ में नहीं आता
1: को भैया जे सरपंच जी ने आज किस बात के लाने सभा बुलाई है।
2: भैया हमें कछु पता नहीं चल रहा है, मिठाई भी बट रही है।
0: मिठाई मिठाई हम तो भैया दो लड्डू खाएंगे।
3: कृपया शांत हो जाइए सब लोग। आप सोच रहे होंगे कि मिठाइयाँ किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है।
0: हाँ, जी, तो साची बात।
3: मिठाई हमारे विद्यालय

0: के मास्टर जी यानी गुप्ता जी द्वारा बंटवाई जा रही है। उनका प्रमोशन हो गया है, अब वे हेडमास्टर बन गए हैं। और उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि वे हमारे गांव के विद्यालय के हेडमास्टर बन गए हैं। अपनी ओर से और पूरे गांव वालों की ओर से मैं गुप्ता जी को बधाई देती हूँ। अब जैन जी इस विषय में आपको आगे बताएंगे।
1: भाइयों और बहनों, पिछली सभा में हमने आपको सूचना का अधिकार कानून, उसका महत्व, उपयोगिता और उसके लाभ के बारे में बताया था। गुप्ता जी का प्रमोशन इसका उदाहरण है। पूरी तरह योग्य होने के बावजूद प्रमोशन ना देकर विभाग ने गुप्ता जी के साथ अन्याय किया था। हमने बस इतना किया कि उसी कानून के जरिए विभाग के ऐसे दस्तावेज मांगे जो अन्याय साबित कर देते। परिणाम सामने है, विभाग ने अपनी भूल सुधारते हुए मास्टर जी का प्रमोशन कर दिया। अच्छा भाइयों, मास्टर जी मुझे इशारा कर रहे हैं, लगता है वो कुछ कहना चाहते हैं। आइए आइए आइए मास्टर जी आइए।
2: भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको विशेष रूप से सरपंच जी और जयंत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि मैं प्रमोशन के बाद भी आप ही लोगों के साथ में हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग से विद्यालय को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास बराबर करता रहूं।
0: सूचना का अधिकार कानून बनके 8 साल हो चुके हैं। 8 साल बहुत नहीं होते, पर इस कानून की बदौलत बहुत से सामाजिक बदलाव समाज और व्यवस्था में आए हैं। कितनी अच्छी बात है ना।

पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जनहित में जो कानून बनाए हैं, सूचना का अधिकार कानून उन्हीं में से एक है। इसने सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगले अंक में जमुनिया क्या करती है,

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 28वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शरद चंद्र के साहित्य का प्रत्येक भारतीय भाषा और कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, अधोसंरचना, सुदृढ़ीकरण एवं जनकल्याण के लिए लगभग 42,490 करोड़ की स्वीकृति दी गई। आगामी 19 सितम्बर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई स्कूटी प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 7,500 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रदेश में 25 सितंबर 2026 से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का शुभारंभ होगा। सुगम परिवहन बस सेवा के अंतर्गत लगभग 150 सिटी रूट, 450 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह में लोक निर्माण विभाग एवं CSIR एम्प्री भोपाल के मध्य समझौता ज्ञापन MOU पर आदान प्रदान किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आज मंत्रालय में मिशन शक्ति के शक्ति सदन और मिशन वात्सल्य की अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के लिए अनुदान ई पोर्टल का शुभारंभ किया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक प्रदेश में कहीं भी अति भारी या भारी बारिश का अनुमान नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 5:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हों लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में, जहां पर मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी पूजा पांडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दूरदर्शन दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की, साथ ही चर्चा करेंगे डीप फेक पर और सुनेंगे हम सब के पसंदीदा फिल्मी गीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस मज़ेदार से गीत के साथ।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म चश्मे बतूर से, जिसमें स्वर थे श्रेया घोषाल और अली जफर के। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं साजिद वाजिद। दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है और टीवी पर सैकड़ों चैनल्स हैं, लेकिन एक वक्त था जब पूरे भारत में सिर्फ एक ही चैनल होता था। और ये सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि यह हर भारतीय परिवार का एक सदस्य बन चुका था। साथियों, मैं बात कर रही हूँ दूरदर्शन की, और आज का दिन है बेहद ही खास क्योंकि आज है दूरदर्शन दिवस। बता दें, दूरदर्शन भारत का सबसे पहला टीवी चैनल है। दोस्तों, बात करें इसकी शुरुआत की तो 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली के एक छोटे से प्रयोग के तौर पर शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत टेलीविज़न इंडिया नाम से हुई थी। पहले ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का ही एक हिस्सा था और हफ्ते में 3 दिन आधे आधे घंटे के लिए प्रसारित होता था। साल 1965 से दूरदर्शन का डेली प्रसारण शुरू हुआ और इसी साल 5 मिनट का पहला बुलेटिन भी पढ़ा गया। धीरे धीरे ये भारतीय घरों का एक अहम हिस्सा बन गया और इसने देश के कोने कोने में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया, जिसके चलते साल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से पूरी तरह अलग करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग बनाया गया। साल 1982 दूरदर्शन के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इस साल भारत में कलर टीवी की शुरुआत हुई और दिल्ली एशियन गेम्स का सीधा प्रसारण पूरे देश में एक साथ किया गया। इसी साल से पूरे देश में एक साथ नेशनल ट्रांसमिशन की शुरुआत हुई। देखते ही देखते यह हर भारतीय परिवार का सबसे प्यारा सदस्य बन गया। इसने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि शिक्षा, खेती और देश दुनिया की खबरें हर घर तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बना। दोस्तों, आज डिजिटल दुनिया में हमारे पास चुनने के लिए हजारों विकल्प हैं। तब दूरदर्शन भारतीय प्रसारण जगत के उस इतिहास की याद दिलाता है जहां से इस पूरे सफर की शुरुआत हुई थी। ये सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं, बल्कि बदलते हुए आधुनिक भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का एक जीवंत प्रतीक है। एक ऐसे समय में जब देश संचार से सीमित साधनों से जुड़ रहा था, दूरदर्शन ने हर भारतीय को एक ही धागे में पिरोने और सूचना को हर घर तक पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया। आज सैटेलाइट चैनलों की इस भीड़ में भी दूरदर्शन की विश्वसनीयता और उसकी सादगी आज भी उतनी ही बेमिसाल है। आज भले ही मनोरंजन के साधन बदल गए हों, टीवी पर सैकड़ों चैनल आ गए हों, लेकिन दूरदर्शन से जुड़ी हमारी पुरानी यादें और इसकी सादगी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। दूरदर्शन ने हम भारतीयों को एक साथ बैठना और मिलकर खुशियां मनाना सिखाया है। दूरदर्शन से जुड़ी हम भारतीयों की भावनाएं और यादें आज भी सबसे अनोखी और अनमोल हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दूरदर्शन दिवस की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से, जिसमें स्वर थे अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और नीति मोहन के। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं विशाल और शेखर। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिस प्रणाली के तहत देश की जनता अपने शासक को चुनती है। लोकतंत्र लोगों के लिए है और लोगों के बारे में होता है। लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। दरअसल आज इस शासन प्रणाली की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। बात करें इसके इतिहास की तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की शुरुआत की थी। सबसे पहले ये आज ही के दिन यानी 15 सितंबर 2008 में मनाया गया था। इसके तहत दुनिया के हर कोने में सुशासन लागू करना है। इस तारीख को चुनने का मेन रीज़न था कि 15 सितंबर 1997 इंटर पार्लियामेंट यूनियन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया था, जो असल में एक गाइड बुक या फिर नियमों की किताब है जिसे दुनिया भर के देशों ने मिलकर बनाया था। इसका मेन मोटिव ये तय करना है कि एक सच्चा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और सरकार को किस तरह काम करना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे एक प्रस्ताव के जरिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 नवंबर 2007 को लोकतंत्र को प्रमोट करने और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए पास किया था। ये दिन सभी लोगों और सरकारों से मानवाधिकारों का सम्मान करने के साथ ही लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी प्रदान करने की अपील करता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव में वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा, मानवाधिकारों के सम्मान, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी और कानून के शासन पर आधिकारिक एक मूल्य है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे को कई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हर साल इस खास दिन डेमोक्रेटिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर डिबेट, स्पीचेस जैसे प्रोग्राम और कई अलग अलग सबमिट्स कंडक्ट किए जाते हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अगले गीत का। आइए सुनते हैं।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म डिशुम से, जिसमें स्वर थी जूनिता गांधी और अमित मिश्रा के। गीतकार हैं कुमार और आशीष पंडित, संगीतकार हैं प्रीतम। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात डीप फेक के बारे में करते हैं। जानते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, डीप फेक असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की एक ऐसी तकनीक है जिसे किसी भी असली वीडियो या फोटो की आवाज़ को इस तरह बदल दिया जाता है कि वो बिल्कुल असली लगने लगती है। इसे आप डिजिटली रूप बदलना भी कह सकते हैं। डीप फेक दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है डीप लर्निंग, जिसका मतलब कंप्यूटर की उस खूबी से है जहां कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह खुद से चीज़ें और पैटर्न सीखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरे शब्द है फेक, जिसका सीधा मतलब होता है नकली या फिर फर्जी चीज़। इस तकनीक के पीछे कंप्यूटर का एक बहुत ही चालाक प्रोग्राम काम करता है। दोस्तों, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसी भी इंसान की बहुत सारी पिक्चर्स, पुरानी वीडियो और उनकी आवाज़ों के सैंपल दे दिए जाते हैं। कंप्यूटर इन सभी चीज़ों को बार बार देखता और समझता है, जिससे कि वो उस इंसान के हंसने, बोलने या तक कि आँखें झपकाने और चेहरे के हाव भाव के तरीके को हूबहू सीख लेता है। जब कंप्यूटर सामने वाले की हर एक अंदाज को पूरी तरह कॉपी करना सीख जाता है, तब वो उसका एक नया नकली रूप बनाने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, डीप फेक वैसे तो बेहद अच्छी टेक्निक है जो फिल्मों, पढ़ाई और इलाज के फील्ड में बहुत काम की चीज़ साबित हो रही है। जहां स्कूलों में फ्रीडम फाइटर्स का डिजिटल रूप बनाकर बच्चों को लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई मज़ेदार हो जाती है। इसके अलावा मेडिकल के फील्ड में भी ये मददगार साबित हुआ है। एक तरफ इसके फायदे हैं तो दूसरी तरफ इस तकनीक का एक बहुत ही खतरनाक चेहरा भी है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आज इंटरनेट पर कुछ बुरे लोग मशहूर हस्तियों और आम लोगों की झूठी और गलत वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर अपराधी किसी भी रिश्तेदार की नकली आवाज़ या वीडियो बनाकर लोगों से पैसे ठगने और ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सबका सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। हमें डीप फेक वीडियो से खुद को सावधान रखना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। यदि आप कोई ऐसी वीडियो देखें जो झूठी या नकली है, या जो डीप फेक द्वारा बनाई गई है, या आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड हुआ हो, तो आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। साथियों, अब समय हो गया है रोजगार सूचना का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जूनियर इंजीनियर के 1748 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ रिलेटेड फील्ड्स में डिप्लोमा का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म भाग जॉनी से, जिसमें स्वर, गीत और संगीत तीनों ही है यो योहानी सिंह का। दोस्तों, हमने आज बात की दूरदर्शन दिवस की, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की, और जाना डीप फेक के बारे में। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा पांडे मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं फिल्म भागम भाग के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ें दी हैं रेमो फर्नांडिस और सूजन ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म गरम मसाला से। प्रीतम का संगीत और शब्द रचना है समीर की।

अपना सपना मनी मनी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था शब्बीर अहमद ने, संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने और इस गीत में स्वर दिए मीका सिंह ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता कक की आवाज़ में, समीर के लिखे बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। फिल्म का नाम है मैंने प्यार क्यों किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन, सौम्या राय और लॉय मेंडोंजा की आवाज़ों में, फिल्म बंटी और बबली से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, फिल्म बंटी और बबली केसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

शादी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नहीं पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस पर्व पर किसानों, फसल और भाईचारे की भावना का उत्सव मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, अधोसंरचना, सुदृढ़ीकरण एवं जनकल्याण के लिए लगभग 42,490 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इन्फोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक 2 SDB 2 का शुभारंभ करेंगे। आगामी 19 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई स्कूटी प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 7,500 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रदेश में 25 सितंबर 2026 से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का शुभारंभ होगा। सुगम परिवहन बस सेवा के अंतर्गत लगभग 150 सिटी रूट, 450 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह में लोक निर्माण विभाग एवं CSIR एम्प्री भोपाल के बीच समझौता ज्ञापन MOU का आदान प्रदान किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आज मंत्रालय में मिशन शक्ति के शक्ति सदन और मिशन वात्सल्य की अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के लिए अनुदान ई पोर्टल का शुभारंभ किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने।

0: अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे, धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।

0: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो सफेद हूं। बादल हट गया।
2: जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
0: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो पीला हूं।
0: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे,
0: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
7: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनो को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है।
6: बधाई हो।
7: धन्यवाद,
4: बहुत बहुत बधाई हो।
7: धन्यवाद।
4: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
6: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
3: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
6: आइए मारिया जी।
7: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हो।
6: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
7: और बुरी?
6: जी।
7: अब भला वो कैसे?
6: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
7: हाँ हाँ जरूर।
6: जी
3: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
8: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
7: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
3: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
9: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
3: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
9: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
3: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
4: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
3: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
4: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
3: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
10: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
7: धन्यवाद
6: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
7: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
10: जी,
7: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
10: जी जी, धन्यवाद
7: धन्यवाद।
3: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
4: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
3: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
4: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत

0: उन्नत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षय।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुचाल की आवाज़ों में। नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म का नाम है आर राजकुमार।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दबंग 2 से। समीर अनजान की शब्द रचना और धुन बनाई साजिद वाजिद ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं शफकत अमानत अली और क्लिंटन सैरजो की आवाज़ों में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। फिल्म का नाम है जोड़ी ब्रेकर्स।

फिल्म भाग मिल्खा भाग से सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में ये गीत, प्रसून जोशी की शब्द रचना और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओं, फिल्म भाग मिल्खा भाग के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने

आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। केंद्र सरकार लगभग 90% और 10% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और अमेरिका के बीच 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। दिल्ली में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर और रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज 10:30 पर आप सुनेंगे कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन। राग होगा गौड़ मल्हार। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी बुधवार 16 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। दोस्तों, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे 8:30 पर।

सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे सुरेश वाडकर, उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन द्वारा गाए भजन। 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे रूपाली पांडे द्वारा ध्रुपद धमार। पखावज पर संगतकार होंगे कौशल कुमार द्विवेदी और राग होगा गुणकली। इस कार्यक्रम का प्रसारण 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण 12:00 और 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 29वां भाग आप सुनेंगे 12:30 पर। श्रोताओं, 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 2:00, शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे कृषि में सेंसर एवं आधुनिक तकनीक का समन्वय, सटीक खेती, इस विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल की भेंट वार्ता। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। सतीश मेहता द्वारा लिखा और अनिल मुंशी द्वारा प्रस्तुत रेडियो नाटक खेल नहीं है जिंदगी आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए रूपाली पांडे द्वारा ध्रुपद धमार। राग होगा बेहाग। पखावज पर संगत देंगे कौशल कुमार द्विवेदी। इस कार्यक्रम का प्रसारण 10:30 पर होगा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास के लिए 42,490 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर में इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे और भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस पर्व पर किसानों, फसल और भाईचारे की भावना का उत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नुआखाई उत्सव समाज में सद्भाव की भावना को मजबूत करेगा और प्रसन्नता तथा समृद्धि लाएगा। नुआखाई का अर्थ है नया खाना। ये ओडिशा में लोक जीवन का प्रमुख पर्व है। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास के लिए 42,490 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं

0: चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि समग्र शिक्षा योजना की आगामी 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 36,006 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। वहीं परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1,166 करोड़ रुपये और उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। श्री पटेल ने बताया कि उज्जैन की चितावत, सिंगरौली की गोंड और अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,600 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृति दी गई है। वहीं मैहर, मऊवन और पांडुना में खनिज शाखा के लिए 21 नए पद तथा अनूपपुर और शहडोल के 4 उन्नत हाईस्कूलों के लिए 36 नियमित पदों की मंजूरी दी गई है।
1: प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण और जन कल्याण को गति देने के लिए लगभग 42,490 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नवगठित जिले मैहर, मऊगंज, पांडुना में जिला कार्यालय खनिज की स्थापना हेतु नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूलों के जो उन्नयन किए गए हैं और उसमें भी कुछ पदों की स्वीकृति की गई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अवमानना याचिका पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा सचिव ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को विनियमित करने के निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। शीर्ष न्यायालय ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को पंजीकृत, मान्यता प्राप्त, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता का 30% हिस्सा क्लीन एनर्जी का है और प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वे आज भोपाल के रविन्द्र भवन में अभियंता दिवस पर आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग के अभियंताओं और कर्मचारियों के प्रयासों से मध्य प्रदेश बिजली गुल से बिजली फुल स्टेट बना है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 25 गुना से अधिक बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के शुभारंभ और उज्जैन में विकास का दीप जलाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे।
2: नितिन नवीन जी हमारे राज्य के अंदर 17 तारीख को माने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ऐसे में पूरा देश उनका जन्मोत्सव सहित पूरा एक महा सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाने वाला है। 17 तारीख को विकास का दीपक जलाने का बड़ा अभियान है। ऐसे में माननीय नितिन नवीन जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जी हमारे राज्य में पहली बार आ रहे हैं। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से उनका आगमन होगा और बाबा महाकाल की नगरी में दीपक लगा करके हमारे इस पूरे अभियान की वो भी साक्षी बनेंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इन्फोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। 3,30,000 वर्ग फीट में विकसित यह नया ब्लॉक प्रदेश में उन्नत तकनीकी क्षमताओं और रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिसके माध्यम से क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इन्फोसिस की क्षमताओं का विस्तार होगा। वर्तमान में इंदौर स्थित इन्फोसिस केंद्र में 3,300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जाने के बाद क्षेत्र के विकास को नई गति देने पर जोर दिया है। नक्सल प्रभावित रहे बालाघाट में सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस जवानों के साहस और बलिदान से बालाघाट में नक्सलवाद को अंतिम विदाई मिली है। इस संबंध में बालाघाट के IG ललित शाक्यवार ने बताया कि पुनर्वास का कार्य लगातार जारी है।
4: माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से एक टारगेट दिया गया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाना है। उसी के तारतम्य में पुलिस ने अपनी कमर कसी, पूरी जॉइंट टीम के साथ काफी ऑपरेशन किए। बालाघाट में 13 नक्सलियों ने समर्पण किया। एक मध्य प्रदेश की नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत उनको जो भी सुविधा है वो दी जा रही है। अभी तक के जो नक्सली जो सरेंडर हुए हैं, जो मारे गए, उन सभी पर 8 करोड़ के लगभग इनाम घोषित किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आज मंत्रालय में मिशन शक्ति के शक्ति सदन और मिशन वात्सल्य की अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के लिए अनुदान ई पोर्टल का शुभारंभ किया। इस डिजिटल व्यवस्था से अनुदान के लिए आवेदन, दस्तावेज अपलोड, प्रस्ताव की जांच, स्वीकृति, भुगतान और निगरानी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। धार में प्रशासन की सख्ती के चलते आज प्रस्तावित वराह मार्च नहीं निकाला जा सका। हिंदू संगठन सनातन प्रहरी द्वारा पीजी कॉलेज से पुरातत्व विभाग की संरक्षित विजय मंदिर तक मार्च निकालने का आह्वान किया गया था, लेकिन प्रशासन ने पहले ही इसकी अनुमति निरस्त कर दी थी। मार्च में शामिल होने के लिए जा रहे करीब 75 से 80 लोगों को पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से हिरासत में लिया। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच अब से कुछ देर में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। वहीं इस श्रृंखला का तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 से 19 सितंबर तक गुना जिले के भ्रमण पर रहेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने तुषार शर्मा मौत मामले के मुख्य आरोपी पूर्व जज गिरबाला सिंह की जमानत याचिका पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। राजगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी SS खत्री ने राजगढ़ शहर के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में धान, ज्वार और बाजरा के पंजीयन के लिए 9 समिति मुख्यालयों को पंजीयन केंद्र बनाया गया है। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने कराहल विकासखंड के ग्राम बावड़ी चापा में जनसुनवाई में ग्रामीणों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। झाबुआ कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में प्राप्त 38 आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। अशोकनगर जिले में यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर 20 स्कूल वाहनों के दस्तावेजों और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। खंडवा जिले में कल से 8 अक्टूबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। सीहोर जिले में दिनभर रुक रुक कर बौछारें पड़ी, वहीं इस सीजन में सीहोर और आष्टा ब्लॉक में पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश दर्ज की गई है। और प्रदेश में 25 सितंबर 2026 से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। सुगम परिवहन बस सेवा के अंतर्गत लगभग 150 सिटी रूट, 450 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास के लिए 42,490 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर में इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। और भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: राम राम स्वीकारें किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भैया बहन जने अपने कृषि

0: कल्याण से जोड़ के देखो जाते है, मतलब साफ है, ऋषि ज्ञान के साधक हैं और किसान प्रकृति और धरती के साधक हैं। जय मारे तो हम किसान के लाने कृषि ऋषि कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कही है, कृषि निरा वही चतुर किसाना, जिमी बुद्धि तजही मोह मदमाना। मतलब कि जे प्रकार से किसान अपने खेतों से खरपतवार निकाल के अलग कर देते हैं, ऐसे ही बुद्धिमान संत जन अपने जीवन से काम क्रोध लोभ मोह को निकाल के अलग कर देते हैं। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक किसान के लाने चतुर किसान की संज्ञा दी है। तो जहाँ बात तो तय है कि किसानी को काम चतुराई को है और किसान चतुर है। मनो एक बात तो है, आज के युग में केवल चतुराई से काम ना चल है, हमें जागरूक होबे की भी जरूरत पड़ है। माने हम अपने खेतों से भरपूर उपज तो ले लेते हैं, मनो ओखो सही ढंग से कैसे बेचें बाको ज्ञान हमें होबो जरूरी है। और आपके लाने बता देबे कि पिछले कार्यक्रम में हमने आपका जानकारी दी है थी, ई मंडी मतलब आप ऑनलाइन अपने अनाज को बेच सकत हैं। उन ई मंडियों में रजिस्ट्रेशन कैसे कराओ जाते है, भुगतान की का प्रक्रिया है, जा भी हमें जानबो बहुत जरूरी है। तो सुनो भैया, ई मंडी पोर्टल पे पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरीके से डिजिटलाइज और पारदर्शी बना दो गो है, जब व्यवस्था किसानों और व्यापारियों को अलग अलग है। तो हम आज बात कर रहे हैं किसानों की। पहली बात तो जा है कि हमें पोर्टल पे जाने हैं, ई के लाने आप ई मंडी पोर्टल या MP किसान ऐप को खोल लो और पाको उपयोग करो। फिर बामे जितने दस्तावेज मांगे गए हैं, जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, खसरा और गिरदावरी जेको कहते हैं, बाबा में शामिल करो। संगे संगे आप जब बाकी पूरी प्रक्रिया कर ले हो तो फिर आपके लाने स्लॉट बुकिंग को ऑप्शन आएगो। तो आप बामे मंडी को चुनाव करने हैं और बाकी बाद में स्लॉट बुक करने हैं, मतलब के कौन दिन कितने बजे आप लेके मंडी में अपनो अनाज पहुंचोगे, जैसे के आपके लाने आसानी हो सके और आपकी तुलाई टेम पे हो जाए। फिर बात करें अगर हम भुगतान करबे की, तो ई मंडी व्यवस्था में फसल की नीलामी और तोल होबे के बाद भुगतान सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाते है, मतलब सौदा भाव और भुगतान उतै भाव वही दिना किसान के खाते में भुगतान चलो जात है। भैया जयलाजे तो कहते हैं, चतुर बनो होशियार बनो, खेती के नए तौर तरीका अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। और भैया जाको बड़ो अच्छो जरिया है, आप खूब कमाई कर सकत हो, अपने खेतों में 1-2 एकड़ भूमि में भी अगर आप जो काम करो तो लाखों कमा सकत हो। होशियारी को काम है औषधीय फसलों की खेती को। हाँ भैया हाँ, औषधीय फसलों की खेती। आज हमारे संगे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उद्यानिकी विभाग के डॉक्टर दीनानाथ घोटे जी। हम उनसे बतकाव कर रहे हैं जय विषय पे के औषधीय फसलों की खेती कैसे करें, तो आप भी सुनो और गुनो। नमस्कार घोटे जी, जैसा कि हम अपने श्रोताओं से बात कर रहे थे, बता रहे थे अभी कि मध्य प्रदेश में औषधीय फसलों की खेती करी जा सकती है और सफलता पूर्वक की जा सकती है, तो पहले तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको ये बतलाइए कि मध्य प्रदेश में औषधीय फसलों की किस तरह से और कौन कौन सी फसलों की खेती करना चाहिए।
1: देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि मध्य प्रदेश में भौगोलिक दृश्य से इतनी विविधता है,
0: हाँ हाँ,
1: कि यहाँ प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से औषधीय फसलों के विभिन्न प्रजातियों का भंडार है। भंडार का मतलब कुछ वृक्ष प्रजातियां है, कुछ कंदीय प्रजातियां है, कुछ हर्बल यानी बिल्कुल सीजन में एक समय मौसमी समय में तैयार होती है और ख़त्म होती है
0: जी।
1: ऐसे अलग अलग तरीके की कई सारी फसलें हम औषधीय फसलें ले सकते हैं या होती है यहाँ पर, जिनका उपयोग हम अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, सौंदर्य वर्धन के लिए कर सकते हैं।
0: अच्छा इनकी हम उपयोगिता की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो कि औषधीय फसलों की खेती करने के बाद उसकी उपयोगिता कितनी सिद्ध होती है।
1: औषधीय फसलों की खेती की जब भी हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता हमें मानव समाज के स्वास्थ्य के प्रति होती है
0: जी।
1: और दूसरी विशेषता आपको ये देखना पड़ेगा कि जैव विविधता, यहाँ पर जैसा मैंने जैव भौगोलिक परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश के बताई है।

0: उनके हिसाब से हमारे पास में लगभग सभी तरह की भारतवर्ष में पाई जाने वाली तीन चार स्थितियों को छोड़ दे सभी तरह की परिस्थितियां हमारे पास में उपलब्ध है किसी एक जिले में अथवा दूसरे जिले में। तो जो विविधता है वही हमारे लिए संभावना और उपयोगिता भी है। बहुत सारी फसलें ऐसी जिनका हम नींदे के रूप में उखाड़ करके खेत से बाहर करते हैं
1: जी,
0: वही औषधि फसलें जैसे अभी आप देखेंगे पुनर्नवा है, उसके बाद में आप देखते हैं कि भुई आंवला जो आंवले जैसी पत्ती वाले छोटे छोटे पौधे वो है, और उसके बाद में दूधी, दूधी तीन प्रकार की दूधी सामान्य तौर पे अपने मध्य प्रदेश के जलवायु में और खेतों में क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दूधी के अलावा आपको कुछ ऐसी फसलें भी है जैसे बावची, बावची नाम सुनने से शायद नया लगे लेकिन ये जितने त्वचा पर जो सफेद धब्बे और सफेद दाग बनते हैं उसके निराकरण में बहुत ही कारगर दवाई मानी जाती है उसको
1: जी,
0: और वो हमारे यहाँ पर लेट खरीफ और रबी के आसपास वो ऐसे पौधे मेड़ों पर और खेतों में उगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो स्वयं अपने आप पर उगती है और उनके व्यवसायीकरण को लेकर के थोड़ा सा यदि कृषक भाई जागरूक रहे और अपनी पड़ती भूमि जहां पर कुछ भी नहीं होता ऐसी जगह पर ये चीजें हो सकती है, जिसमें केवच है, आप एलोवेरा या जिसको हम घृतकुंवारी कहते हैं वो है, ये ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। आपने सना या सोनामक्खी का नाम सुना होगा, स्वर्णमुखी जो आजकल पाचन के मामले में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, उसका उत्पादन सबसे कम सिंचाई के साधन में ही आराम से हो सकता है और विशेषता उसकी एक है कि एक बार आप लगाएंगे चार साल तक उसकी फसल अपन काट सकते हैं।
1: वाह, ये वाकई बड़ा, हम लोग जिसे खरपतवार कह के खेत से बाहर निकाल देते हैं वह औषधि है और उसका भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं। सर, जो व्यवसायिक दृष्टि से अगर हम खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे?
0: व्यवसायिक दृष्टि से जो खेती हम करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी फसल के रूप में ही हम केवल उनको लगाते हैं, वहाँ पर अन्य दूसरी फसलें नहीं होती है। और यदि केवल हमारी उस फसल के रूप में ही हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय प्रयास है, तो हमको उसके उत्पादन की पूरी प्रक्रिया अपनाने के साथ में हमें आर्थिक रूप से लाभ का भी दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। जैसे अभी ये जो मौसम चल रहा है इसमें मालवा क्षेत्र में खासतौर मंदसौर, नीमच और उससे लगा हुआ जो राजस्थान का एरिया है
1: जी,
0: क्षेत्र है, वहाँ पर अश्वगंधा की खेती होती है जिसको अगस्त के दूसरे तीसरे सप्ताह में
1: जी
0: वर्षा पर आधारित फसल के रूप में अश्वगंधा लगाए जाते हैं। तो उसमें भारी वर्षा के कारण और जो सामान्य नींदा घास फूस उगती है उसको उगने देते हैं, उसके बाद जैसे ही खुला मौसम मिलता है उसकी जुताई करके खेत तैयार करके इसका अश्वगंधा का बीज उसमें डाल दिया जाता है
1: जी।
0: अब ये जो खेती होती है ये बिना किसी अतिरिक्त साधन के, सिंचाई साधन के या अन्य के, बहुत आराम से हो जाती है। अब इसमें क्योंकि अगस्त के बाद में अब सितंबर अक्टूबर तक इक्का दुक्का बारिश हो ही जाती है और वो होने से ये फसल स्वयं पनप जाती है, लेकिन इसके जब रेट की बात करते हैं तो बाजार भाव बहुत अधिक है। इसकी उपयोगिता के बारे में तो मैं अक्सर कहता हूँ कि एड़ी से लेकर चोटी तक के लगभग सभी प्रकार के विकार, चाहे त्वचा से संबंधित हो, चाहे नींद से संबंधित हो, चाहे हार्ट से संबंधित, ब्लड से, हर चीज में अश्वगंधा उपयोगी है। और इसकी विशेषता यह है कि इसकी जड़ उपयोग होती है, पशु भी इसको ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। सुरक्षित इसलिए रखना पड़ता है कि जब पशु उस पर चरते हैं, चलते हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है, बाकी बहुत ज्यादा इसको खाना पसंद नहीं करते। तो ऐसी अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमारे पास में अलग अलग फसलें हैं जिनके व्यवसायीकरण से हम पारंपरिक रूप से जो हम फसलें ले रहे हैं उनकी तुलना में इससे अधिक आमदनी प्राप्त हो सकती है। न केवल अधिक आमदनी प्राप्त हो सकती है बल्कि इसकी लागत भी कम होती है और हमारे मानव समाज के स्वास्थ्य संवर्धन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान।
1: सर, जैसे जड़ वाली औषधि फसलों की हम बात कर रहे हैं, सतावरी की भी बहुत चर्चा होती है, दो वर्षीय फसल मानी जाती है, इसको लगाने का मध्य प्रदेश में कितना स्कोप है?
0: देखिए, सतावरी का भी जैसे मैंने अपनी शुरुआत चर्चा में की

0: है कि बहुत सारी प्राकृतिक रूप से, जंगली रूप से हमारे यहाँ औषधि फसलें होती है, सतावरी भी उनमें से एक है, और इनको व्यावसायिक रूप से भी लगा सकते हैं। लेकिन हमको जब खेत की बात करते हैं तो जैसे व्यावसायिक स्वरूप में 2 साल या उससे आगे समय में इस फसल को निकालना है, सामान्य तौर पर कृषक भाई इतना इंतजार नहीं कर पाते हैं। तो सतावरी है, मुलेठी है, आपका ये सर्पगंधा है, ये ऐसी फसलें हैं, ये आप समझिए कि 24 महीने से लेकर के थोड़ा सा अधिक समय भी उनको लगता है। तो फायदा जरूर होता है, लेकिन वो उस समय तक यदि इंतजार करते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद होती है।
1: प्रोसेसिंग की भी बात कर लेते हैं कि ये जो सारी दवाइयां हैं इसको मार्केट कहाँ उपलब्ध होगी?
0: देखिए, औषधि फसलों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो है उसकी शुद्धता और उसका स्वरूप। रासायनिक रूप से हम उसके विश्लेषण की बात करेंगे तो उसमें जो औषधीय गुणों के जो संघटक है उनकी मात्रा कितनी और किस स्वरूप में, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे जितने भी औषधि फसल अपन ले रहे, जैसे अश्वगंधा की बात की है, अश्वगंधा में कई तरह के 100 से अधिक एल्कलाइड्स उसमें पाए जाते हैं। अब उन एल्कलाइड्स की मात्रा पर्याप्त यदि है तो ठीक है, यदि आपने गलत समय पर उसको खुदाई की और गलत तरीके से उसका भंडारण किया तो वो उपयोगी नहीं रहता।
1: सही है।
0: तो जो प्रसंस्करण की बात आ रही है और प्रसंस्करण के पहले विपणन की बात आ रही है, आप जो औषधि फसल उगा रहे हैं उसके पहले समझ लें कि वो किस स्वरूप में
1: बिकेगी,
0: कितने स्वरूप में बिकेगी, उसका ग्राहक किस तरह का है। अश्वगंधा की जड़ों की यदि मैं बात करूं तो इनकी ए बी सी डी और 3-4 ऐसी श्रेणियां होती है। जो अच्छी श्रेणी की है वो तो सीधे स्वरूप में, खड़े स्वरूप में ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पाउडर करने के बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जड़ों की जो शाखाएं है, टूटे फूटे हिस्से है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनका पाउडर करके भी बेचा जाता है और उनकी वैल्यू है। कालमेघ यदि की बात करें तो कालमेघ की मार्केटिंग में यदि उसकी पत्तियां सीधी सीधी है, बिना चूरा हुए, बिना उसके, तो उसकी कीमत आपको अपेक्षाकृत ज्यादा
1: मिलेगी।
0: और जैसे ही उसका चूरा हुआ, टूट गई, अभी आप जनरली जब कालमेघ लेने जाते हैं तो उसकी केवल लकड़ियां लकड़ियां सूखी सूखी मिलती है, पत्तियां भी मिल नहीं पाती है, और उसको कई बार तो चूंकि लोग जानते नहीं इसलिए समझ भी पाना मुश्किल होता है कि ये कालमेघ है अथवा नहीं। तो विपणन के लिए हमको उसकी गुणवत्ता ध्यान रखना पड़ेगी। अभी मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया सुविधा इस मामले में मंडी है, नीमच में हर्बल मंडी, औषधि फसलों की मंडी। वहाँ पर तो लगभग हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर प्रकार की घास फूस,
1: सच्ची बात,
0: ऐसी चीज जो आपकी कहीं नहीं बिक रही, आपके लिए कचरा है, यदि आपने कहीं वहां पहुंचा दी तो उसके व्यवसायिक रूप से बिक जाएगी।
1: सर, एक सवाल है छोटा सा है, प्रशिक्षण की अगर बात आती है तो क्या सरकार द्वारा कहीं कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है?
0: सामान्य तौर पे उद्यानिकी विभाग द्वारा भी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाते हैं
1: जी।
0: उसमें भी एक पाठ्यक्रम के रूप में कई बार कृषकों की आवश्यकता के हिसाब से उसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा वन विभाग के माध्यम से जो औषधि विकास बोर्ड की योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी प्रशिक्षण का है। बहुत सारी अपनी निजी संस्थाएं, एनजीओज, ये भी ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।
1: तो भैया, जे जो आप बातचीत सुन रहे थे, जे थे हमारे डॉक्टर दीनानाथ घोटे जी, जो कि उद्यान के बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और बहुत अनुभवी वैज्ञानिक हैं। भैया, औषधीय फसलों में अगर देखो जाए ना तो छोटी फसलें तो है ही हैं, बड़े वृक्ष भी जो हैं औषधीय फसलों में आते हैं, जैसे आंवलो भव, नीम भव, हर भव, बहेरा भव, मुनगा भव, इनके लाने भी आप लगा के औषधीय फसलों के रूप में लाभ ले सकते हैं। यही मारे तो कहते हैं भैया कि बिरछा लगाओ, हरे बिरछा लगाओ, गांव गलियन में कह दो कि बिरछा लगाओ। अरे बिरछा

0: भैया अबे जो नोनो अच्छो लोकगीत अपन सुन रहे थे रई सिंह यादव और साथियों के सुरों में। बात हम कर रहे हैं वृक्षों की, और एक वृक्ष ऐसो है भैया जो लगभग लगभग हर घर में मिल जाते हैं, और कैसा वातावरण होए कैसी मट्टी होए ओ में वो खूब फर्क है। ओखो हम कहते हैं अमरूद को पेड़, बिही को पेड़, और जब बिही इतनी फर्क है भैया कि हम खा खा के आगा जाते हैं। मनो एक बड़ी समस्या जा है कि बरसात के दिनों में अमरूद के फलों में मक्खियां लग जाते हैं, फल मक्खी लग जाते हैं और बेफल मक्खी फलों को सड़ा देते हैं, खाबे योग्य नहीं बचे फल। ऐसे में अब बरसात तो निकरवे बारी है, मनो अब जो आवे वारो सीजन है ओ में आपके अमरूद के फल में अगर मक्खी लगी है तो भाई कैसे हटावे, और अच्छे ताजे स्वस्थ अच्छे मीठे फल आप कैसे खावे, एक लाने जरूरी है कि अमरूद में फल मक्खी को प्रबंधन करो। भैया फल मक्खी को अमरूद में कैसे प्रबंधन करो जाए बता रहे हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो कि उद्यान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के। सुनत हैं
1: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज बात करेंगे अमरूद में फल मक्खी प्रबंधन। किसान भाई जैसा कि जानते हैं अभी अमरूद का समय शुरू होने वाला है, और अक्टूबर जैसे ही आता है तो बाजार में बहुत सारे जगह फलों की, चाहे सेब हो अमरूद हो केला हो, तो उसकी बहुतायत देखने को मिलती है। इसमें हम बात करते हैं कि अमरूद में एक फल

0: मक्खी कीट का प्रकोप बहुत तेजी से इसमें देखा जाता है, तो आखिर फल मक्खी कीट क्या है और उसका कैसे नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं, इस पे हम थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि फल मक्खी जैसे ही अक्टूबर का माह आता है तो उसमें कुछ फल नीचे जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं, तो ये किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि जैसे ही मिट्टी पे या जमीन पे कुछ फल मिलते हैं इसका मतलब फलों में फल मक्खी का प्रकोप शुरुआत हो गई है। उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले देखना है कि फलों में कहीं कोई छोटा सा कोई छिद्र दिखाई दे रहा है क्या। अगर अमरूद के ऊपर या साइड में कहीं कोई छिद्र दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि फल मक्खी के कीट ने अमरूद के अंदर अंडे दे दिए हैं, उसमें जो है उससे प्यूपा और लार्वा निकल के उस फलों को नुकसान पहुंचाएगा, तो इससे हमारे बगीचे में काफी नुकसान होने की संभावना है। तो किसान भाइयों को यहां समझना चाहिए कि इसमें दो तीन प्रकार से हम उसके नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि एक तो फल मक्खी प्रपंच आता है, फल मक्खी प्रपंच अगर हम 5 से 6 पौधों पर एक प्रपंच लगा दें तो मिथाइल यूजेनोल प्रपंच के नाम से दुकानों पर मिलता है और उसमें फल मक्खी प्रपंच 100 से 120 रुपए का बाजार में उपलब्ध है। उस प्रपंच को लेकर 5 से 6 पौधों पर अगर आप लगाते हैं तो पूर्ण तरह से आप फल मक्खी के प्रकोप को नियंत्रित कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक दूसरे तरीके से हम जो 100 लीटर पानी में 1 किलो अगर गुड़ का घोल बना लें और उसमें इमिडाक्लोपीड, फिप्रोनिल या एसीटामेप्रिन उसको हम थोड़ा सा घोल बना के उस पर छिड़काव करते हैं तो उससे भी हम जो है फल मक्खी के प्रकोप को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमने जो ये घोल बनाया उस घोल को डिस्पोजल गिलास में अगर लेके नीचे उसके पौधे की जड़ों के पास रखते हैं, पौधों के आसपास रखते हैं, तो उससे भी हम जो है फल मक्खी के प्रकोप को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत ही जरूरी है किसान भाइयों को कि फल मक्खी जैसे ही हमें फलों में देखते हैं तो वो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता। उसके लिए जैसे ही किसान उस अमरूद को ऊपर से बिल्कुल साफ फल होता है उसको हम फोड़ते हैं तो अंदर से महीन महीन महीन बहुत इल्ली दिखाई देती है, तो उससे हमें समझ लेना चाहिए कि वो कोई और प्रकोप नहीं है, वो केवल फल मक्खी का प्रकोप है। और फल मक्खी के प्रकोप को लिए केवल 17 से 18 दिन में जो इसकी मक्खी अपने अंडा देके लार्वे से कन्वर्ट होकर वो पूरी पूर्ण मक्खी बन जाती है, और एक मक्खी अपने जीवन काल में 15 से 18 दिन केवल उसका जीवन काल होता है, 20 दिन उस जीवन काल में 200 से 300 अंडे देती है। और 200 से 300 अंडे से अंदाजा लग सकता है कि एक किसान का अगर एक भी मक्खी है तो उसमें कितना प्रकोप उससे होता है, नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों को अमरूदों की पूरी नीचे से सफाई रखनी है, गर्मी में गहरी जुताई करनी है जिससे उसके प्यूपा से उसका एडल्ट न बन पाए। गहरी जुताई करके उसका जो है प्यूपा ऊपर जमीन पर आ जाता है और तेज धूप में वो मर जाता है, तो गहरी जुताई कर दे, उसको जो है अमरूद की कटाई और छटाई करके एक हवादार पूरा बना दे जिससे नीचे से ऊपर तक प्रकाश जाए और हवा जाए जिससे जो फल मक्खी का प्रकोप है वो कम से कम हो। किसान भाइयों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि अमरूद के बीच में पपीता या बेर या अनार या आम वो फल ना लगाए जिससे कि उसकी फल मक्खी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है, या कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं, अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों को भी हम अमरूद के आसपास लगाते हैं तो उसमें भी फल मक्खी का प्रकोप होता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों को कद्दू वर्गीय सब्जियों अगर लगी हुई है तो एक साथ ही सारी चाहे अमरूद हो चाहे फसल हो सब्जियां हैं उन पे स्प्रे करना है। अगर आपका अनार उसके साथ लगा है, आम लगा है, तब भी उसमें उसके साथ स्प्रे करना है। अगर कोई खरपतवार है साइड में नीचे है तो उस पे भी उसके उस पे स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों को उसके नियंत्रण के लिए कुछ जैविक रूप से जैसे आपका गुड़ का घोल और पानी का एसीटामेप्रिड फिप्रोनिल का घोल बना के उसका स्प्रे करके जैविक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो है ट्रैप होता है फल मक्खी प्रपंच होता है उसके इस्तेमाल से फल मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ किसान भाइयों को यहां मैं सलाह देना चाहूंगा कि किसान भाइयों को जैसे ही अक्टूबर का समय आता है उस समय फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बरसात का समय खत्म है और जाड़ों का समय शुरू है उस समय एक हल्की जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई नहीं करनी है क्योंकि उस समय जो है उसकी रूट पौधे की प्रभावित होती है, तो हल्की जुताई अगर वो कर देते हैं तो फल मक्खी का अगर कोई प्यूपा जमीन में पड़ा रहता है तो उसके स्प्रे से हम जुताई करके उसका स्प्रे करके उसे नष्ट कर सकते हैं और पुनः जो पूर्ण मक्खी ऊपर उड़ के आती है तो वो नहीं आ पाती और उसके फलों को प्रकोप नहीं कर पाती। धन्यवाद
1: भैया। अब चलते हैं मौसम आधारित कृषि सलाह की तरफ। सबसे पहली सलाह तो आपका जा है कि अब बरसात बिदा होबे की स्थिति में है, मनो फिर भी कहूं कहूं तेज बरसात हो रही है तो कहीं मद्दी हो रही है, कहीं घामो निकरो है। ऐसे में अब मट्टी में जो नमी है ओखों बचावे की जरूरत है के देर तक खेत में नमी बनी रहे। ऐसे में आपको सलाह दी जा रही है कि मिट्टी में नमी संरक्षण के उपाय करें। एक और अच्छी जानकारी है भैया, एक सूचना है किलाने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 किलाने धान ज्वार बाजरा बेचबे किलाने पंजीयन को काम आज से माने 15 सितंबर से शुरू हो रहा है जो 10 अक्टूबर तक चलेगा।

0: एमएसपी यानी समर्थन मूल्य पे लाभ लेवे के लाने आप सभी किसान भैया अपनो पंजीकरण अपने पास के उपार्जन केंद्र पे जाके या ई मंडी में जाके करा लेवे, जे की हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा करी है थी। भैया आपसे बतकाव करे में टाइम कैसे निकल जाते पतो नहीं चले। तो आज के लाने अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना को दियो आज्ञा, दो ही हाथ जोड़े की राम राम स्वीकार करो। जय सियाराम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
4: आज से गुजरात गांधीनगर में एक विशेष आयोजन शुरू हुआ है, वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। और इस सम्मेलन का मकसद है कि विश्व भर में सर्कुलर इकोनॉमी की चर्चा को और तेज किया जाए। और जैसा कि अगर थीम की ही बात करें तो थीम रखी गई है सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन फॉर पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम इस सम्मेलन के हवाले से ही सर्कुलर इकोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सानवाल कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद।
4: तो सबसे पहले मैं थीम पर ही आऊँगा। जैसा कि इस फोरम की थीम है सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन फॉर पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी, तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम आपसे संक्षेप में और आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे लोगों की समृद्धि के लिए, आर्थिक तरक्की के सही तरीके को अपनाने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी का अपनाया जाना जरूरी है।
5: सर्कुलर इकोनॉमी शब्द का शुरुआत हुई थी विकसित देशों से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए कि ये देखा गया है कि औसतन इस विश्व में एक व्यक्ति 13 टन मटेरियल का प्रयोग हर साल करता है। 13 टन मटेरियल, जिसमें पत्थर भी है, स्टील भी है, अन्य पदार्थ भी है, एक औसतन। पर इसकी मुख्य बिंदु यह है कि विकसित देशों में वो 6 गुना ज़्यादा प्रयोग करते हैं मटेरियल का अन्य लोगों की तुलना में। तो हम जब देखते हैं, कहीं प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, विकास देखते हैं, तो हमको लगता है कि हमको भी उसी तरह से अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। हम भूल जाते हैं उनका पदार्थों का प्रयोग 6 गुना ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात भारत से शुरू हुई है
4: जी,
5: कि व्यक्ति और समाज को आगे बढ़ाना है, इसको सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2018 में इस बात की थी, और अब पर्यावरण मंत्री ने गांधीनगर ने भी उसी की चर्चा की है। और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जब बात करते हैं विश्व नेताओं से या संयुक्त राष्ट्र संघ में, इस बात पर चर्चा देते हैं कि हमको लाइफ पर जोर देना है कि व्यक्ति और समाज कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा कंजम्पशन कम होना चाहिए
4: जी।
5: तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम जब अब तुलना करते हैं कि वो 6 गुना ज्यादा क्यों है और उसका सलूशन कहाँ निकलेगा, तो उनका सलूशन है कि हम प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज करें, हम अपने आर्थिक जो उत्पादन होता है उस पर हम अंकुश लगाएं। हमारे यहाँ क्योंकि इतना कम प्रयोग होता है, ये कहा गया है प्रधानमंत्री से, जैसे मैंने कहा शुरू हुआ था 2018 में संयुक्त राष्ट्र में, कि हमको अपना ही जो हम प्रयोग करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उसको हम कम करें। ये दो बहुत बड़े, दो अलग दिशाएं हैं
4: जी।
5: अब महत्व जो भारत कह रहा है, जो मंत्री जी ने कहा गांधीनगर में, उसका ये है कि अब हम भी विकसित होंगे, अन्य देश भी विकसित होंगे, उद्योग बढ़ेगा। तो अगर हम अभी से अपना कंजम्पशन जो हम प्रयोग करते हैं अगर हम सीमित रखेंगे, उसको ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, तो आगे चल के फायदा होगा। इसका ये महत्व है कि हम उनकी तुलना में ये ना देखें कि जो पदार्थ निकल रहे हैं फैक्ट्री से, कैसे उसको उपयोग करें या उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें, पर जो हम खरीद रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, व्यक्ति या समाज कर रहा है, उस पर अगर परिवर्तन होगा तो बुनियादी रूप से आगे चल के जो फैक्ट्री से निकल रहा है उसका कम वेस्ट होगा, उसका कम प्रदूषण होगा।
4: आपने जैसा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के वक्तव्य का उल्लेख किया, तो उसी से जुड़ा हुआ मैं ये प्रश्न आपसे अगला पूछना चाहूँगा। जैसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये हमारा सतत विकास का एक प्राचीन नज़रिया है, हमारी प्राचीन संस्कृति में ये रचा बसा है।
6: सर्कुलरिटी मस्ट एक्सटेंडेड बियॉन्ड वेस्ट मैनेजमेंट। It calls for embedding circular economy principles into the development and maintenance of sustainable and resilient infrastructure. For India, this is an important moment because our BRICS chairship has placed circular economy alongside sustainable lifestyles.
4: आप कैसे देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का या चीज़ों को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल करने का एक पुराना तरीका था उसे आज के इस दौर में वापस लाने की कितनी ज़रूरत है? और आपने मिशन लाइफ का की बात की जिसका प्रधानमंत्री ने भी बार बार उल्लेख किया है और उसे अपनाने पर जोर दिया है, तो कैसे हम अपने पुराने तरीकों को वर्तमान जीवन शैली में अपना कर अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ दे सकते हैं?
5: देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक अनुकलन किया था, अनुकलन में ये बात आई कि ग्लोबल लेवल पर सिर्फ रिसाइकल या सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ 10% है। इतना राजकीय देशों ने, विकसित देशों ने जितने जोर लगाया है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 10% है। अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रयोग है, एक इसी तरह से रिसर्च का आकलन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं भारत में, हम इतना विकास हो चुका है फिर भी ग्लोबल एवरेज से हम आधे हैं। तो भारत एक जो दिशा अपना रहा है अपने विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए, वो एक अलग दिशा है अन्य देशों की तुलना में। भारत का आर्थिक विकास तेजी से चल रहा है पर हमारा कंजम्पशन अभी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस विश्व एवरेज से आधे हैं। तो ये क्यों है ऐसा? वो इसलिए है कि हमारी सभ्यता इंडस्ट्री के पनपने से नहीं सामने आई है, पर एक प्राचीन सभ्यता जो थी, जो हमारे विचारधाराएं थीं, वो शुरू से ही ये थीं कि हम प्रकृति को माँ गंगा कहते हैं, उदाहरण है। हम प्रकृति को नष्ट करके अपना विकास नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ शुरू से रहा है कि नेचर के साथ मिलकर ही हमारा विकास होगा, नेचर को नष्ट करके नहीं होगा। इसीलिए जो सड़कें बन रही हैं, अन्य उत्पादन हो रहा है, उसका असर नेचर पर, उसका असर वातावरण पर क्या होता है, उस पर एक डिबेट चर्चा होती रहती है। जो डिबेट चर्चा वहाँ नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे सभ्यता का, हमारी संस्कृति का एक ये भाग रहा है शुरू से।
4: जी, आम नागरिक की निश्चित तौर पर जागरूकता की इसमें ज़रूरत है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोड्यूसर्स की, उत्पादकों की, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है। और इसमें आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इसका जिक्र किया कि 83,000 से ज़्यादा जो उत्पादक हैं वो इसमें अब रजिस्टर हो चुके हैं और अपनी जो जवाबदेही है उत्पादन को लेकर, उसको लेकर वो अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है उद्योगों की ओर से, उत्पादकों की ओर से, कि वो सर्कुलर इकोनॉमी में अपनी जवाबदेही या अपनी जिम्मेदारी तय करें जिससे कि एक संतुलित जो विकास है वो आगे चलकर हो सके?
5: हम सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, न करनी चाहिए, हमको संतुलित विकास की बात करनी चाहिए। संतुलित विकास तभी होगा जब कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं ध्यान दिया जाएगा। आजकल एक चर्चा चल रही है कि जो पदार्थ बेचे जाते हैं उसके अंदर क्या है, उसकी लेबलिंग सही होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि उसका सीधा असर हमारे सेहत पर होता है। इसी तरह से जो मंत्री जी ने बात कही है वो यही है कि इसी तरह से हमको सुनिश्चित करना है कि जो चीज़ कोई उत्पादन करके बेचता है उसको इस पर ध्यान देना है कि सिर्फ बेचना ही पर्याप्त नहीं है, पर उसका असर क्या हो रहा है उसको भी उसी को देखना है। ये नहीं कि शासन अलग से देखेगा या समाज अलग से देखेगी, जो उत्पादन करके बेच रहा है उसको भी देखना है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये एक नई दिशा आ रही है, इस पर चर्चा होगी, इसका विरोध होगा, पर आगे चल के, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात को एक पॉलिसी इशू बनाया है, एक नीति का विषय बनाया है, तो कुछ ना कुछ इसमें हल निकलेगा, समय लगेगा पर निकलेगा। इसमें यह है कि जो चीज आप बेच रहे हैं उसका अगर नुकसान हो रहा है तो उसको वापस भी आप ही लीजिए, जो बच जाता है, प्लास्टिक बच जाता है या बोतल बच जाती है, उसको आप लीजिए, उसकी आप ही जिम्मेदारी लीजिए और अपने बिजनेस प्लान में उसको सम्मिलित करिए। उसको ये मत सोचिए कि ये आपके आयात निर्यात से कुछ भिन्न है, ये उसी का भाग है। ये बहुत बड़ी नई दिशा आ रही है और मेरे ख्याल से इसका असर होगा, क्योंकि पर्यावरण पर ही नहीं, अब ह्यूमन हेल्थ, हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है, और उससे फिर लेके समाज को, शासन को, आगे चल के वृद्धों की देखरेख या उनकी चिकित्सा पर जो खर्च करना पड़ता है वो इससे कहीं ज़्यादा है।
4: मैं चर्चा में, जैसा कि शुरू में आपने जिक्र किया, उसी पर वापस आना चाहूँगा कि विकसित देश जिस तरह से पर्यावरण में, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो या प्रदूषक प्रदूषण के मामले में उनका कंट्रीब्यूशन हो, इसको लेकर एक बहुत बड़ा ये मसला वैश्विक स्तर पर रहा है। हम इस फोरम की ही चर्चा करें तो इसमें अगर देखें तो लगभग 65 से ज़्यादा देश शामिल हुए हैं और इसमें ज़्यादातर वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ हैं, जो विकासशील देश हैं। ऐसे में क्या संदेश देता है ये फोरम की विश्व स्तर पर जो विकासशील देश हैं वो अपने विकास के मॉडल को एक सर्कुलर मॉडल की तरह से जो प्रस्तुत कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे विश्व स्तर पर आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा और संतुलित विकास की ओर जिस तरह से बढ़ना हमें ज़रूरी है पूरी दुनिया को, उसकी तरफ एक सीख होगी।
5: देखिए, आपने बहुत अहम बात कही क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है या ये जो चर्चा हो रही है गांधीनगर में, इसकी पहल फिनलैंड और नेदरलैंड से आई है। और नेदरलैंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे साइकिलों का बड़ा भारी प्रयोग होता है आवागमन के लिए
4: जी।
5: उनकी संतुलित विकास और उनकी वेस्ट या सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान बहुत पहले से रहा है फिनलैंड, नेदरलैंड, इस तरह के अन्य देशों में। जब ये उनने पहल की है तो वो अपने अन्य विकसित देशों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और विकासशील देशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस देखिए अगर आपने वो रास्ता अपनाया तो फिर दुनिया में बहुत भारी असर पड़ेगा, व्यक्तियों पर असर पड़ेगा और हो सकता है कुछ पदार्थों की कमी भी बन जाए। और अगर प्रदूषण जल स्तर पर पहुंचता है तो उसका भी असर होगा। कि हम विकासशील देशों की तरफ देखते हैं, उनकी समृद्धि को देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें कमियां क्या हैं और हम अगर उसी स्तर पर पहुंचना है तो क्या कोई अलग रास्ता है जिससे हम पहुंच सकते हैं। मिशन लाइफ वो अलग रास्ता दिखा रहा है, भारत को ही नहीं अन्य विकासशील देशों को, कि जब आप अपने को ऊपर उठाएंगे, अपने ग्रोथ करेंगे, अपना वेलबींग का स्तर ऊंचा करेंगे तो इन चीज़ों पर भी पहल रखिए कि उस तरह से अगर हमको नहीं बढ़ना है, हमको कुछ अपना ही अलग दिशा निकालनी है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लास्टिंग इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यही होगा कि हम एक चर्चा शुरू होगी कि एक दूसरी दिशा भी है, एक ही दिशा नहीं है, और वो दूसरी दिशा में मेरे ख्याल से भारत अग्रणी है।
4: एक आंकड़ा अंत में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उससे संबंधित मेरा ये प्रश्न होगा कि जैसे नीति आयोग ने एक अपनी आर्थिक लाभ की एक रिपोर्ट में कहा है कि नीति आयोग का अनुमान है कि अगर सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल भारत अपनाता है तो भारत बहुत बड़ी संख्या में कच्चे माल की बचत कर सकता है और आर्थिक लाभ भी भारत को इसका होगा। रिसोर्स एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो इस मामले में भारत सर्कुलर इकोनॉमी से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और इसका दूसरा उदाहरण हमने आज फोरम में भी देखा, ऐसे कई 125 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है वहाँ, जो इस रिसोर्स एफिशिएंसी को दर्शा रही हैं कि कैसे सर्कुलर इकोनॉमी के तहत हम उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। तो भारत विकास के जिस मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसमें उद्योग तो है, विकास तो है, लेकिन साथ में

0: सतत विकास पर भी फोकस है, तो ये कैसे एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सकता है?
1: इसका एक जीता जागता उदाहरण है सीमेंट इंडस्ट्री।
0: बिल्कुल,
1: सीमेंट हमारा भारत का जो कोयला है उसमें करीब 40% फ्लाई ऐश होती है, एक पदार्थ ऐसा है जिसको फेंका जाता था, जिसका उपयोग सीमेंट में नहीं होता है। उसको लोगों ने सीमेंट के साथ मिला के कॉन्क्रीट की ईंट बनाना शुरू किया। अब अगर आप देखते हैं कि उस कंक्रीट की सीमेंट की ईंटों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, एक नया उद्योग खुल गया, एक इंडस्ट्री का वेस्ट, दूसरा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हो गया और उसका उपयोग समाज में शुरू हो गया, क्योंकि उसमें स्थिरता भी उतनी है और उसमें खर्चा भी कम होता है, क्योंकि वो एक ही आकार की ईंट होती हैं, उसको तोड़ने की, उसको जमाने की जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह से पुरानी ईंट जमाई जाती थी। तो कई इस तरह के उदाहरण सामने आते हैं। प्रश्न इसमें ये होता है, जो बात पहले भी आई, कि अभी तक हम विकसित देशों की तरफ देख रहे थे कि वहाँ जो हुआ है उसी को हमको अपनाना है और सबसे अच्छा वहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2018 में जब मिशन लाइफ की बात की, कंजम्पशन पैटर्न पर ध्यान दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उससे एक नई दिशा इसमें ये थी कि हमको कुछ और चीजें देखनी है, कंजम्पशन देखना है और प्रोडक्शन की तरफ ही सिर्फ नहीं देखना है, क्योंकि अब हम अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, तो हम किस तरह कौन सी दिशा अपनाएंगे, विकास का क्या परिभाषा देंगे, वो महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारी आबादी उनसे कहीं ज्यादा है। अगर इतनी आबादी में भारत ही नहीं, अफ्रीका, एशिया, ये जो अन्य विकासशील देश ऊपर आ रहे हैं, उनकी आबादी वेस्ट से कहीं ज्यादा है, 5 गुना 4 गुना ज्यादा है। अगर इतनी बड़ी संख्या की आबादी वही मॉडल अपनाएगी तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, बहुत नुकसान होगा। एक नई दिशा दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री भूपेन जी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ भी देखो, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसको और लोग अपना सकते हैं, और एक नई दिशा दी जा रही है जिसका असर पर्यावरण पर ही नहीं पर हमारी सेहत के ऊपर भी होगा।
0: बहुत धन्यवाद मुकुल सानवाल जी, आपने कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखे, और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर जो भारत का विजन है और जो समय की मांग है, उस पर आपने बहुत सी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म राम लखन से। मनहार और अनुराधा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की शब्द रचना और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है मदन पाल ने। नदीम श्रवण का संगीत है, कुमार सानू की आवाज़ और फिल्म का नाम है आशिकी।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम बेवफा से। सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था महेश किशोर ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून इन किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, संगीत है आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, उषा और शैलेंद्र की आवाज़ों में, असद भोपाली के लिखे बोल राम लक्ष्मण का संगीत, फिल्म है मैंने प्यार किया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
4: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
5: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 करोड़ तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 करोड़ पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
8: We need to develop sports infrastructure.
9: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
8: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
1: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
10: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
11: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
12: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
14: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
13: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
14: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region. Having said that, let me say that we continue to receive energy supplies from that part of the world.
13: On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. When asked about the reward of serving

0: डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
1: जनाब सिंह ने वाज़े किया कि विकसित भारत के हदफ का मकसद महज मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क बनाना नहीं बल्कि मुल्क को टेक्नोलॉजी के एतबार से खुद कफील, समाजी तौर पर शमूलियाती, माहौलियाती तौर पर पायदार और स्ट्रेटजी के एतबार से महफूज बनाना भी है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ऐसे में जब दुनिया तनाज़ात और तजाद से गुजर रही है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। जनाब राधाकृष्णन आज कौमी राजधानी दिल्ली में कौमी अहमियत के हामिल इदारे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की सिल्वर जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत आलमी खत्े जनूब से ताल्लुक रखने वाले सभी मामलों समेत आलमी चैलेंजों से बेहतर खुद एतमादी और अपने नजरियात के साथ निमट रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज से कहा है कि वो सुबुकदोश हो रहे प्रिसाइडिंग अफसरान और नीम अदालती इदारों के अराकीन की मुद्दत कार में एक महीने या नए तकर्रात तक तौसी पर गौर करे। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि खाली ओहदों की वजह से ट्राइब्यूनल्स गैर फ़ाल न हो जाएं। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी के तवसुत से मरकज से दरखास्त करते हुए कहा कि नए तकर्रात का अमल शुरू हो चुका है और एडहॉक तौसी की दरखास्तों पर गौर न किया जाए। मरकज ने इस महीने की 8 तारीख को बेंच को बताया था कि मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स के 248 अराकीन ट्राइब्यूनल्स इस्लाही कानून 2026 के तहत खिदमात में तौसी के अहल पाए गए हैं और उनकी खिदमात में तौसी की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंगाली मुसन्निफ सरत चंद्र चट्टोपाध्याय को उनको 150वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तख्लीकात का भारत की सभी जबानों और कई गैर मुल्की जबानों में तर्जुमा हुआ है। सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी CCPA ने रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह को इश्तहारात के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये कंपनी सवारी के लिए प्लेटफॉर्म रैपिडो पर खिदमात फराहम करती है। सारिफिन के उमूर से मुतालिक वजारत ने कहा है कि जिस तरह सवारी करने वालों को उनकी सवारी की तस्दीक से पहले ही ज्यादा पैसे अदा करने के लिए कहा गया, इस सिलसिले में कारोबार के गलत तौर तरीकों, नाजायज कॉन्ट्रैक्ट और धोखा देने के मामले में जुर्माना नाफिज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद मुल्क में सरगर्म टैक्सी और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म का एक शोभाजाती जायजा लिया गया। अपने जायजे के दौरान CCPA ने पता लगाया कि रैपिडो का तरीक़ाकार शर्मिंदगी का एहसास दिलाने वाला है जो डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और उसे मुंजबित करने से मुतालिक रहनुमा खतूत 2023 के तहत एक डार्क पैटर्न है, क्योंकि इसके तहत अगर सारिफ ज्यादा पैसा अदा करने से इत्तफाक नहीं करता तो उसे सवारी ना मिलने का डर होता है। सऊदी अरब में सिविल डिफेंस ने आज मक्का, जद्दा और ताइफ में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सऊदी अरब की बहरे अहमर की तेल की असल बंदरगाह यम्बोह समेत 6 शहरों में अलर्ट जारी किया गया और फिर हटा लिया गया। हौसियों के इम्कानी हमलों के पेश नज़र कम वक्त के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए। अहलकारों की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि खतरा टल गया है, अलर्ट कुछ मिनटों के बाद ही हटा लिए गए। पीर के रोज़ खमीस मुशैत, अबहा और ताइफ में हौसी हमलों में 13 शहरी जख्मी हो गए थे और घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान आज एक हौसी अहलकार ने दावा किया कि सऊदी जंगी तैयारों ने यमन के ताइस सूबे पर हमला किया जिसमें 3 अफराद की मौत हो गई। यमन में एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू होने से शहरियों के साथ साथ बहरे अहमर के रास्ते जहाजरानी को भी खतरा लाहिक हो गया है, जो आब नए हुरमुज में रुकावटों के बाद एक अहम गुजरगाह है। डिफेंस अकाउंट्स के महकमे ने पेंशन के निजाम से मुतालिक सिस्टम रक्षा स्पर्श पर फजाइया और बहरिया के पेंशन मामलों को 100% हल कर लिया है। वजारत दिफा ने आज बताया कि खसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर महकमे ने भारतीय फजाइया और भारतीय बहरिया से ताल्लुक रखने वाले 1,45,182 मामलों को कामयाबी से निपटाया। इन मामलों में 1,12,000 मामलों का ताल्लुक भारतीय फजाइया और तकरीबन 32,000 का ताल्लुक भारतीय बहरिया से था। ورلڈ اسکلز شنگھائی 2026 کے لیے 70 ہنرمند نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے دستے کو جھنڈی دکھائی گئی. ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینورشپ کی وزارت نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں الوداعی تقریب کے دوران ان کھلاڑیوں کی میزبانی کی. بھارتی دستہ اس مہینے کی 22 سے 27 تاریخ تک

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आदाब सामईन, आकाशवाणी भोपाल के उर्दू प्रोग्राम कहकशां में आप सबका पुरखलूस खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन बानो। आज का हमारा प्रोग्राम उर्दू शायरी के उस शायर के नाम है जिसने मोहब्बत को भी गुफ्तगू का अंदाज दिया, शिकायत को भी शाइस्तगी दी और उर्दू जबान के आम बोलचाल के लहजे को गजल की खूबसूरती बना दिया। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ दाग दहलवी की। तो आइए, आज दाग को सिर्फ शायर की हैसियत से नहीं बल्कि कैसे इंसान की हैसियत से जानने की कोशिश करते हैं जिसकी जिंदगी में दिल्ली की तहजीब, जुदाई का दुख, मोहब्बत की कसक, दरबार की रौनक और शायरी की दुनिया सब एक साथ नजर आते हैं। दाग दहलवी का असल नाम नवाब मिर्जा खान था। सन 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद नवाब शमसुद्दीन खान थे और वालिदा वजीर खानम। दाग की परवरिश दिल्ली के लाल किले के माहौल में हुई। यही वो जमाना था जब दिल्ली उर्दू जबान व अदब का एक बड़ा मरकज था। शायरी की तरफ दाग को ले जाने में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक की इस्लाह और तरबियत का बड़ा किरदार रहा। दिल्ली की जबान, मुहावरे और तहजीब उनके कलाम का हिस्सा बनती चली गई और दाग की शायरी की सबसे नुमाया खूबी यही है कि उनका शेर हमें मुश्किल नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे शायर हमारे सामने बैठकर हमसे बात कर रहा हो। मसलन, ले चला जा मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जा मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। कितनी सादा जबान है लेकिन इसी सादगी में शिकायत भी है, मोहब्बत भी और जुदाई का दर्द भी। समईन, दाग की शायरी को समझने के लिए दिल्ली की उस तहजीब को समझना भी जरूरी है जिसमें जबान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि गुफ्तगू का सलीका थी। और जब हमने दाग के इब्तदाई हालात और उनके शायराना मिजाज को जान लिया है तो आइए इसी मोहब्बत भरी फिजा को एक खूबसूरत गजल के साथ महसूस करते हैं। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, आवाज दी है स्वाति मिश्रा ने, समाप्त कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म जानवर से। मोहम्मद रफी की आवाज़, हसरत जयपुरी की शब्द रचना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन से। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म ज्वेल थीफ का गीत अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन का संगीत था और बोल लिखे मजरू ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म किस्मत से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, शब्द लिखे हैं नूर देवासी ने, संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये अगला गीत सुनिए फिल्म संगम से। शैलेंद्र की शब्द रचना और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: फिर क्या हुआ
1: भैया? फिर झुमका गिरा दे,
2: राजा मेहंदी अली खान का लिखा ये गीत। अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरा साया से, मदन मोहन का संगीत और आशा भोसले की आवाज़। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म शागिर्द से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। मजरू के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म शागिर्द के सी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन, राग है गौड़ मल्हार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे गौड़ मल्हार राग पर कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे टी ट्वेंटी क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
5: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
4: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Chief Ministers of 6 states today signed the Kishaw Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah expressed confidence that once the project is completed, this event will become an important chapter in history. He said that the central government has declared the Kishaw project a national project. Mr. Shah said the central government will bear approximately 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in 6 cities including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia today issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplanes struck Taiz province of Yemen, killing 3 people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The Delhi government has announced to double the fixed monthly incentive for ASHA workers from 3,000 rupees to 6,000 rupees. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi today. She said that the increase in the monthly incentive was an important step towards recognizing ASHA workers' contribution and ensuring their financial security. Ms. Gupta said that it will boost their enthusiasm for their work and help them continue their services. There are 6,725 ASHA workers currently working in Delhi. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tonight and take a 2-0.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।